श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में ये भक्ति रचना। और इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत हैं श्री रामचरित मानस गान। आज के कलाकार हैं चारू सेन और उनके साथी।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

चारू सेन और उनके साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में सुनवाते हैं ये पहली भक्ति रचना। हरिओम शरण के स्वर में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, और अब सुनवा रहे हैं हरिओम सरण के स्वर में ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरि ओम सरन और साथियों के स्वरों में ये भक्ति रचना, और इसी रचना के साथ ही आज का कार्यक्रम समर्पण अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण

अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः के 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में मृणालिनी अखौरी को। प्रातः 7 का समय होगा जोहार चाय बासा कार्यक्रम का। प्रातः 8 समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार प्रातः 8:15 पर। प्रातः 8:30 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। प्रातः 8:40 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक में संथाली लोकगीत कलाकार सोना मुर्मू एवं साथियों की आवाजों में। प्रातः 9 कार्यक्रम होगा हिंदी वार्ता विविधा। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। प्रातः 10 फिल्म संगीत। प्रातः 10:30 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:55 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 3 आप सुनेंगे न्यूज इंडिया समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 3:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। संध्या 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 4:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। संध्या 5 मुख्य समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 5:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विवरण। संध्या 5:05 पर समय होगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम गुलदस्ता का। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। संध्या 6 मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7 और उसके बाद जिले में आज कल। संध्या 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। संध्या 7:30 पर समय होगा किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 9। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11 हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी न्यूज रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:45 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज के कलाकार हैं मृणालिनी अखौरी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में मृणालिनी अखौरी को, और इसी संगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा। कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, फिल्म आंधी से, बोल गुलजार के और संगीत आरडी बर्मन का।

0: मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म आज और कल का ये गीत बोल साहिर के और संगीत रवि का। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं कार्यक्रम जोहार चाईबासा में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवा रहे हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वरों में फिल्म आदमी और इंसान का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म उसने कहा था का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और तलत महमूद की। और अब सुनवा रहे हैं फिल्म उपकार का ये देशभक्ति गीत, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में, गीतकार गुलशन बावरा।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म उपकार का ये देशभक्ति गीत आवाज़ महेंद्र कपूर और साथियों की, बोल गुलशन बावरा के। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस अंतराल के बाद श्रोताओं कार्यक्रम जोहार चाईबासा में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म वरदान का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म विश्वास का ये गीत, और अब सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर को फिल्म वारदात में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में फिल्म उजाला का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनवा रहे हैं फिल्म आग और शोला का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आग और शोला का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की। और इसी गाने के साथ ही आज का कार्यक्रम जोहार चाईबासा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाईबासा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल

0: की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुर स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन,
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्म सम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
5: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
4: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
6: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था
4: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
7: बिरसा मुंडा गांव गांव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपने धन का जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
4: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम किरकेट्टा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
8: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
9: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
8: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
9: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
8: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
10: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul

0: work together to amplify the concerns of the Global South. He said the impact of global crisis on developing nations needed to be articulated forcefully and could not be ignored by the international community. Referring to what he described as the 4F crisis of fuel, food, fertilizers and finance, the External Affairs Minister said conflicts in different parts of the world along with the COVID-19 pandemic in previous years had set back the development prospects of the Global South. India's Putul Sonowal has created history by shoring the country of its first ever medal at the World Bowls Champion of Champions in Barham, Australia. The 43-year-old from Assam achieved the milestone by reaching the semi-final of the men's singles event. In men's cricket, West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20 International in Ranchi last night, levelling the 5-match series 1-1. Chasing a target of 250 runs, West Indies overall the score posting 252 runs for the loss of 4 wickets in 18.3 overs, winning the match with 9 balls to spare. Captain Shai Hope led from the front with a magnificent 102 of 45 balls, while Sherfane Rutherford's 84 of 87 set the chase alight. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
1: Thank you, Pramod. By polls boost, BJP wins both Bengal seats, Assam Lok Sabha seat, headlines the statement by the Tribune. Headlines, ruling parties win by poll battles across 4 states, Union Territory. The Asian Age headlines, Delhi turns into fortress to halt CJP protests today. The papers add that 40,000 plus security personnel deployed, 45 metro stations shut and mobile internet suspended in areas near protest site and diversions in most routes. Another prominent story covered in all newspapers is the Indian origin jurist Navanatham Navi Pillai winning the Nobel Peace Prize. The Hindu says international jurist Navi Pillai wins Nobel Peace Prize. The paper adds that she was born in Durban in Tamil origin parents, grew up under apartheid and studied law at Harvard. And finally, a story in the Indian Express says seized from Thane 2 years ago, infant orangutan sets to return to Indonesia. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar. Today, tightened security across national capital, Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at the World Bowls Champion of Champions after reaching the semi-finals in Australia. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार बस थोड़ी ही देर में।
3: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ
4: बहु पेट से है ना, तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
3: ये तो खुशी की बात है, घर में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे इसके लिए समय समय पर बहु की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
4: मैंने बहु का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
5: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जांच कराएं।
3: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य लें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं?
8: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
9: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
8: लो अब जनरेटर को क्या हुआ?
9: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
8: अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या?
10: वो भी तो 2 जान संभाल रही है।
8: बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीक को अपनाने पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति

0: डीपी राधाकृष्णन का झारखंड दौरा आज, एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह और बीबीएमटी अस्पताल में आयोजित सैन्य संपर्क मेले में होंगे शामिल। झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर आज लगेगा विशेष मेगा हेल्प डेस्क। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार और विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। महालया आज देवी दुर्गा का किया जा रहा आवाहन। रांची समेत राज्यभर में कई जगहों पर होंगे कार्यक्रम। कल से शारदीय नवरात्र की होगी शुरुआत। और रांची में खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से की बराबरी। श्रृंखला का तीसरा मैच कल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही।
1: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड के देवघर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति देवघर के बीबीएमटी अस्पताल में आयोजित सैन्य संपर्क मेले का भी दौरा करेंगे। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर एक दिवसीय विशेष मेगा हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है। शिविर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मेगा हेल्प डेस्क में एसआईआर से संबंधित लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा।
2: 10 अक्टूबर को सभी पोलिंग स्टेशन मेगा हेल्प डेस्क कैंप लगाया जा रहा है, ताकि किसी भी वोटर का ग्रीवेंसेस है उसका एड्रेस करना, कुछ स्टेक होल्डर्स है इस तरह से वोटर के पास ग्रीवेंसेस करके बोला जा रहा है, तो उसका कराने के लिए हम लोग को कैंप आयोजन कर रहा है। लोग इलेक्टर का भी बैठक हो, पोलिंग एरिया में वोटर का क्या समस्या है उसका भी सुनाया जाएगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय बालिकाओं की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने पलामू जिले के पंडवा प्रखंड में धान खरीद के बकाया भुगतान मामले में 104 किसानों को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि इन 104 किसानों पर धान खरीद में अनियमितता का कोई आरोप नहीं है। अदालत ने कहा कि किसानों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 2 महीने के अंदर उच्च न्यायालय में राशि जमा कराई जाए। रांची के सदर अस्पताल में आज दोपहर 3:30 बजे सांसद संजय सेठ नमो जीवन रक्षक बाइक एम्बुलेंस का लोकार्पण करेंगे। डीआरडीओ द्वारा विकसित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह एम्बुलेंस सुदूरवर्ती गांवों और शहर की सक्रिय गलियों में आपातकालीन चिकित्सा सहायता पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज महालया है, इसके साथ आज देवी दुर्गा का आवाहन किया जा रहा है। महालया के अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्यभर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। रांची के दुर्गाबाड़ी में आज शाम महिषासुर मर्दिनी नाटक का मंचन किया जाएगा। वहीं कल से शारदीय नवरात्र की शुरू

0: शुरुआत होगी। राजधानी रांची समेत राज्यभर में दुर्गा पूजा की तैयारी तेजी से चल रही है। जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जमशेदपुर में पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया।
1: सुरक्षा को भी इसमें बहुत प्राथमिकता देना चाहिए, सुरक्षित माहौल में इसको करने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पूजा पंडाल तो पूरे जिले में जैसे 325 के करीब यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अभी तो सब में काम चल रहा है, तब लोगों को बता रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर का तो वो प्रॉपर केयर करें कि जो कनेक्शन वगैरह हो वो कहीं पे लूज नहीं हो।
0: हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश प्रथम तरुण कुमार की अदालत ने इचाक में हुए दोहरे हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए सभी 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र में सेल सिटी में झारखंड के पूर्व सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी के बंद घर में चोरी की घटना हुई है। चोर करीब 1.5 लाख रुपए नकद, 20 से 25 लाख रुपए के जेवरात, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। आज राज्यभर में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। क्रिकेट। रांची में खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाकर मैच जीत लिया। एक भारतीय फैन ने कहा, यह रोमांचक और हाई स्कोरिंग मैच था।
2: रांची होम ग्राउंड है ईशान किशन का। सभी रांची के क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि रांची में जीत मिलेगी इंडिया को, तो उस लिहाज से थोड़ा सा दुख तो हो रहा है, लेकिन मैच काफी अच्छा था, रोमांचक मैच था, हाई स्कोरिंग मैच था। दोनों तरफ से बढ़िया स्कोरिंग हुई, छक्के चौकों की बरसात हुई, मजा आया।
0: इस श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने T20 क्रिकेट और 4 राज्यों के उपचुनाव परिणाम की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत, असम की लोकसभा सीट पर भी कब्जा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर में भाजपा की बड़ी जीत। दैनिक भास्कर ने T20 मैच की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, जिसका शीर्षक है, वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराया। और दैनिक जागरण ने झारखंड उच्च न्यायालय में जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा मामले की सुनवाई की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। जेपीएससी के हवाले से लिखा है, शुचिता तथा संस्था की पवित्रता के लिए रद्द की गई परीक्षाएं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीक अपनाने पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का झारखंड दौरा आज, एम्स देवघर के दीक्षांत समारोह और बीबीएमटी अस्पताल में आयोजित सैन्य संपर्क मेले में होंगे शामिल। झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर आज लगेगा विशेष मेगा हेल्प डेस्क। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार और विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। महालया आज, देवी दुर्गा का किया जा रहा आवाहन। रांची समेत राज्यभर में कई जगहों पर होंगे कार्यक्रम। कल से शारदीय नवरात्र की होगी शुरुआत। और रांची में खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से की बराबरी। श्रृंखला का तीसरा मैच कल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हरे रंथू बेटा, अपनी गाड़ी हमेशा तैयार रखना। अब तुम्हारी भाभी के बच्चा होने का समय निकट आ गया है, इस बार उसे स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाऊंगी।
4: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
3: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
4: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
3: गर्भ के दौरान बराबर जांच कराते रहें।
4: हमेशा सही और ANM से संपर्क में रहें।
3: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार BPL परिवार को
4: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
7: नक्शा तो ठीक है, पर इसमें शौचालय कहाँ है?
6: अरे उसकी क्या जरूरत।

0: डॉक्टर, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
1: क्या कहा? खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे संथाली लोकगीत कलाकार सोना मुर्मू और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी की महक में संथाली लोकगीत, कलाकार सोना मुर्मू एवं साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोना मुर्मू एवं साथियों की आवाज़ों में संथाली लोकगीत, और इसी लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम माटी की महक अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आपने सुना कार्यक्रम माटी की महक में संथाली लोकगीत कलाकार सोना मुर्मू और साथियों की आवाजों में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर और अब प्रस्तुत है हिंदी वार्ता कार्यक्रम

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले तमाम श्रोताओं को रेखा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सबको मालूम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको विविध रंगी जानकारियां देते हैं, विविध प्रकार के दिवसों के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 10 अक्टूबर और आज के ही दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।

10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष आज के दिन ही मनाया जाता है। यह पहली बार 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल पर मनाया गया था, जो एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है जिसके सदस्य और संपर्क 150 से अधिक देशों में हैं। यह विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ द्वारा 1992 में शुरू किए गए एक वैश्विक वकालत और जागरूकता कार्यक्रम का परिणाम है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का पहला आयोजन दस अक्टूबर 1992 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया था, जो 150 से अधिक देशों में सक्रिय एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। इस पहल का प्रस्ताव विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ के उप महासचिव रिचर्ड हंटर ने 1992 में रखा था। पहली बार 1992 में यह दिवस मनाया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की एक पहल है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ एक अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता संगठन है जिसकी स्थापना 1948 में मानसिक और भावनात्मक विकारों से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता और उचित उपचार एवं देखभाल को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 का थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को समझने और उसका समर्थन करने को प्राथमिकता देने का आह्वान करता है, चाहे खुली बातचीत के माध्यम से हो, स्वयं की देखभाल के माध्यम से हो या करुणा के माध्यम से। हर छोटा प्रयास हम सभी के लिए एक स्वस्थ और दयालु दुनिया बनाने में मदद कर सकता है। इसके तहत 333 का नियम यह है कि वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करके चिंता को प्रबंधित करने का एक त्वरित और व्यावहारिक तरीका है। यह आपको 3 ऐसी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहता है जिन्हें आप देख सकते हैं, 3 ऐसी चीजें जिन्हें आप सुन सकते हैं और 3 ऐसी चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं। यह लोगों को तनाव, बदलाव और चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करता है। यह दिवस स्पष्ट सोच, निर्णय लेने की क्षमता और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और दैनिक कार्यों में सुधार कर सकता है। यह तनाव या अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण स्कूल, काम या पारिवारिक जीवन में आने वाली बाधाओं को कम कर सकता है। श्रोताओं, बातों को यहीं विराम देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये संदेश।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है, हमारे देश की भावनाओं

0: के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम विविधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत जावेद अली के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जावेद अली के स्वर में ये प्यारा सा गीत। और अब हम बातें करेंगे फोस्टर केयर योजना के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकतानुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल योजना क्या है। श्रोताओं, यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष या दोनों की सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो। पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है। तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं फिल्म पूरब और पश्चिम का ये देशभक्ति गीत, आवाज महेंद्र कपूर और साथियों की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म पूरब और पश्चिम का ये देशभक्ति गीत, आवाज़ महेंद्र कपूर और साथियों की। और अब हम बातें करते हैं राष्ट्रीय पोस्ट दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, सन 1854 में 10 अक्टूबर को भारत में डाक सेवा की स्थापना शुरू हुई। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आज के दिन राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य डाक सेवा के महत्व को मान देना है और इसकी उपयोगिता को स्वीकारना है। भारतीय डाक का जनक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में ब्रिटिश डाकघर वॉरेन हेस्टिंग्स ने मार्च 1774 में

सेवा को आम जनता के लिए खोल दिया था। और वारेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1766 में देश में डाक सेवा शुरू करने की पहल की थी। इसे शुरू में कंपनी मेल के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे क्राउन के अधीन एक सेवा में बदल दिया गया। इसी जानकारी के साथ ही श्रोताओं, अब समय हो चला है आप सबों से विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए विदा दें, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, फिल्म साजन से, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म पापा कहते हैं का ये गीत, आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीतकार राजेश रोशन। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: चाहिए
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
4: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
7: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
6: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम रसरंजन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म कहो न प्यार है का ये शीर्षक गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म दिल का क्या कसूर का ये गीत। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम रसरंजन अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में सुनवा रहे हैं ये पहला गीत कुमार सानू और संजीवनी की आवाजों में फिल्म करीब से। गीतकार राहत इंदौरी और संगीतकार अन्नू मलिक।

और अब सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म कसूर का ये गीत, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरे नाम का ये शीर्षक गीत, आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब सुनवा रहे हैं आशा भोसले, अमित कुमार और रीमा की आवाज़ों में फिल्म थानेदार का ये गीत। गीतकार समीर और संगीतकार बप्पी लहरी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म मोहरा का ये गीत, बोल आनंद बख्शी के और संगीत बीजू साह का। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची के कार्यक्रम, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पाँच मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची। तो बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे थोड़ी ही देर में।
1: HIV एक विषाणु है जिसका संक्रमण HIV संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। HIV एड्स की जानकारी के लिए ना को टोल फ्री नंबर 1-097 पर संपर्क करे या ना को एड्स ऐप डाउनलोड करे। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: त्योहारों के इस मौसम में स्वागत है, अभिनंदन है आपका, आपके अपने प्रोग्राम जोहार रांची में। और आज इस कार्यक्रम के सफर में एक बार फिर आपकी हम सफर है आपकी दोस्त शिल्पी। जब भोर की पहली किरण धरती को छूती है और वातावरण शंख की पवित्र ध्वनि से गूंज उठता है, तब माँ के आगमन की आहट से मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है। महालया की मंगल ध्वनि से पूरे वातावरण में माँ दुर्गा के आगमन की आहट सुनाई देने लगी है। जी हाँ, आज है महालया। महालया केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि ये अतीत के प्रति कृतज्ञता और आने वाले शुभ समय के प्रति विश्वास का दिन है। आज वो पावन अवसर है जब एक ओर हम अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, तो दूसरी ओर माँ दुर्गा के स्वागत के लिए अपने मन के द्वार खोल देते हैं। माँ जो केवल मंदिरों और पंडालों में नहीं आती, बल्कि हर उस घर में आती हैं जहाँ प्रेम हो, हर उस मन में आती हैं जहाँ विश्वास हो। और आज के दिन तो हर आंखों में, हर हृदय में माँ के आगमन की प्रतीक्षा है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं हाथ जोड़कर कह रही हो, हे माँ दुर्गा, हमारे जीवन में शक्ति बनकर आइए, साहस बनकर आइए, उम्मीद बनकर आइए और अपने आशीर्वाद से हर अंधेरे को प्रकाश में बदल दीजिए। तो आइए आज की इस पावन भोर में कुछ पल अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करें और फिर पूरे विश्वास और उमंग के साथ माँ भवानी का आह्वान करें। महालया की मंगल ध्वनि के साथ ही वातावरण में दुर्गा पूजा की उमंग खुलने लगी है। और जब माँ की शक्ति का स्मरण होता है, तब जीवन की मुश्किलों के बीच किसी दिव्य सहारे की तलाश होती है और मन कहता है, हे माँ भवानी, जब कदम डगमगाए तो संभाल लेना, जब राह कठिन हो तो रास्ता दिखा देना, और जब हम कमजोर पड़ने लगे तो बस हमारे साथ चलना। क्योंकि जब माँ का साथ होना तो कठिन राह पर भी मन कहता है, चल भवानी, पथ की तू सारी मुश्किलों का मेरे हल भवानी, चल भवानी।

जोहार रांची में बढ़ते हैं आज के सफर पर और झांकते हैं अतीत के झरोखे में और देखते हैं क्या कुछ खास हुआ था आज की तारीख में, यानी 10 अक्टूबर को कुछ रे वर्षों में। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज ही के दिन सन 1910 में वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सन 1942 में सोवियत संघ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने राजनयिक संबंध की शुरुआत की और सन 1970 में फिजी ने स्वतंत्रता हासिल की। सन 1964 में टोक्यो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

किया गया और सन 1971 में अमेरिका के एरिजोना के लेक हवासु शहर में लंदन ब्रिज को पुनर्निर्मित किया गया। इसे ब्रिटेन से खरीद कर तोड़कर अमेरिका लाया गया था। सन 1978 में रोहिणी खादिलकर राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला बनी। सन 1990 में अमेरिका का 67वां मानव अंतरिक्ष मिशन डिस्कवरी 11 अंतरिक्ष से लौटा। सन 1991 में आज ही के दिन भारत ने विश्व कैरम प्रतियोगिता की 3 खिताब जीता और सन 1992 में दूसरा हुगली पुल विद्यासागर सेतु खुला। केबल से बने देश के सबसे बड़े सेतु के निर्माण में लगभग 13 वर्ष लगे थे। सन 1999 में 10 अक्टूबर को ही सन 2006 के राष्ट्रकुल खेल मेलबोर्न में कराए जाने की घोषणा हुई और सन 2001 में बांग्लादेश में खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सन 2003 में भारत ने इसराइल रूस के साथ एवॉक्स निर्माण के लिए समझौता किया और सन 2004 में ऑस्ट्रेलिया के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड को भारी जीत मिली। सन 2005 में आज ही के दिन एंजेला मार्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी। सन 2014 में 10 अक्टूबर को ही भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई। सन 1846 में आज ही के दिन ब्रिटेन के खगोलविद विलियम लासन ने नेपच्यून ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह ट्राइटन की खोज की। बातें अभी और भी होंगी, उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। अब
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची में, जोहार रांची। और जोहार रांची में अब उन मशहूर शख्सियतों की बातें जिनका आज ही के दिन यानी 10 अक्टूबर को जन्म हुआ था। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सन 1902 में कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार के शिवराम कारंत का जन्म हुआ। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, साथ ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और स्वीडिश अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सन 1910 में द्वारकानाथ कोटनिस का जन्म हुआ था, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन में निस्वार्थ सेवाएं देते हुए जान गंवाने वाले भारतीय डॉक्टर थे। और सन 1920 में हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में इनकी रचनाएं काफी चर्चित हुई। डॉक्टर रामविलास शर्मा भारत के प्रथम व्यास सम्मान विजेता थे। सन 1920 में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी का जन्म हुआ। इन्होंने अक्टूबर सन 1969 में कोलंबो योजना सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। सन 1923 में भारतीय वैज्ञानिक शिवराज रामशरण का जन्म हुआ था। इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रोफेसर के रूप में काम किया और शिवराज रामशरण को क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में उनके काम के लिए जाना जाता है। सन 1985 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1924 में भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का जन्म हुआ। बलबीर सिंह ने 3 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सन 1948 में लंदन में, 1952 में हेलसिंकी में और 1956 में मेलबर्न में। और इन तीनों ओलंपिक में भारत

भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। सन 1906 में भारतीय उपन्यासकार आर के नारायण का जन्म हुआ। उन्होंने सन 1935 में पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा। इस पुस्तक और इसके बाद की नारायण की सभी कृतियों में पृष्ठभूमि दक्षिण भारत का काल्पनिक शहर मालगुडी है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स एंड अ टाइगर फॉर मालगुडी है। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और सन 1988 में भारतीय रोवर एथलीट मनजीत सिंह का जन्म हुआ। इन्हें सन 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1995 में भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी सुतीर्था मुखर्जी का जन्म हुआ। ये 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा रही। सन 1954 में मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा का जन्म हुआ। रेखा एक ऐसी अदाकारा है जिनकी खूबसूरती ने उन्हें पहचान दी और अदाकारी ने मुकाम दिया। रेखा की खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं है बल्कि उस आत्मविश्वास की है जो उम्र के साथ कम नहीं हुआ, चाहे उमराव जान की नजाकत हो या मंजू की चंचल शोखी या जोहरा के साथ, ये कभी भी कम नहीं हुआ। चाहे उमराव की नजाकत हो या जोहरा का किरदार, हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। रेखा एक ऐसा चेहरा है जिनकी आंखों में शायरी है, मुस्कान में राज, अदाओं में नजाकत है और अभिनय में गहराई।

जोहार रांची में अब जिक्र उनका जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। तो सबसे पहले याद करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की वीरांगना महिलाओं में से एक लुडमिला पावलीचेंको को, जिनका निधन 10 अक्टूबर 1974 ईस्वी को हुआ। वे इतिहास की सबसे कामयाब स्नाइपर्स में से एक रहीं। इन्हें गोल्ड स्टार ऑफ द हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का सम्मान दिया गया था। इन्हें लेडी डेथ के नाम से भी शोहरत मिली। सन 1983 में 30 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री रूबी मेयर्स का निधन हुआ। इन्हें 1973 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2015 में दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर हास्य अभिनेत्री मनोरमा का निधन हुआ। मनोरमा ने 1000 फिल्में की और इसके साथ ही इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। सन 2002 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 2007 में राजनीतिज्ञ एसआर बोम्मई का निधन हुआ और सन 2022 में आज ही के दिन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का भी निधन हुआ। सन 2011 में गजलों की दुनिया के बादशाह जगजीत सिंह का निधन हुआ। जगजीत सिंह की गजलों ने न सिर्फ उर्दू के कम जानकारों के बीच शेरो शायरी की समझ में इजाफा किया बल्कि गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी उनका परिचय कराया। जगजीत सिंह ने कई हिंदी फिल्मों में भी न सिर्फ गीत गाए बल्कि संगीत भी दिया। सन 1981 की फिल्म प्रेम गीत और 1982 की महेश भट्ट निर्देशित फिल्म अर्थ को भला कौन भूल सकता है। अर्थ फिल्म में जगजीत सिंह ने ही संगीत भी दिया था। इस फिल्म का हर गाना लोगों ने पसंद किया और गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जगजीत सिंह डिजिटल सीडी एल्बम बियॉन्ड टाइम करने वाले पहले भारतीय संगीतकार बने। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में एक खूबसूरत सा गीत।

जोहार रांची में अब बातें आज मनाए जाने वाले विशेष दिनों की। तो हम आपको बताएं कि आज 10 अक्टूबर को हम मना रहे हैं एक ऐसा दिन जिसके साथ ही लौट आई है पुरानी यादें, जब गांव की पगडंडियों और शहर की गलियों में साइकिल की घंटी की आवाज और उस पर खाकी वर्दी में बैठा एक ऐसा शख्स जिसकी थैली में थी अनगिनत कहानियां। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं डाकिया की, और आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय डाकदार दिवस। ये दिन सिर्फ डाक सेवा का उत्सव नहीं, बल्कि उन भावनाओं का सम्मान है जो एक कागज के टुकड़े में सिमटी होती थी। जब ना मोबाइल था ना इंटरनेट की रफ्तार, तब चिट्ठी तो थी जो दिलों को जोड़ती थी, मीलों की दूरी को पल में मिटाती थी ये चिट्ठियां। डाकिया सिर्फ चिट्ठी नहीं लाता था, वो भावनाओं का संदेश वाहक था। उसकी आवाज सुनते ही बच्चे बूढ़े जवान सबके चेहरों पर उत्साह की लहर दौड़ जाती थी। चिट्ठी खोलने का वो पल जब कागज की सिलवटों से शब्द बाहर झांकते थे, बड़ा ही खूबसूरत होता था, रोमांचक होता था। तब पत्र लिखना एक कला था, शब्दों को संजोना, भावनाओं को स्याही में उतारना, फिर डाक से उसे भेजना, ये सब जैसे एक अनुष्ठान सा था। और फिर जवाब का इंतजार हफ्तों तक चलता, पर उस इंतजार में थी एक अनोखी मिठास। आज का डिजिटल युग, जहां एक सेंड टच से बात पूरी हो जाती है, उस मिठास को कहां समझ पाता है। व्हाट्सएप, ईमेल, वीडियो कॉल ने चिट्ठियों को पीछे जरूर छोड़ दिया है, पर क्या वो उन भावनाओं को छू पाया जो हाथों से लिखे खत में बसते थे। वैसे आज भी कुछ बुजुर्ग अपने पुराने लिफाफों को ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे कोई अनमोल खजाना हो। आज भारतीय डाक विभाग सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं, ये डिजिटल इंडिया का सशक्त हिस्सा है। स्पीड पोस्ट, पार्सल बैंकिंग, ई कॉमर्स डिलीवरी और इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर जैसी सेवाओं ने इसे आधुनिक बनाया है। यानी डाकिया अब केवल खत नहीं, बल्कि भारत की प्रगति की रफ्तार भी लेकर आता है। फिर भी राष्ट्रीय डाकदार दिवस हमें याद दिलाता है कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़े, एक चिट्ठी का भावनात्मक स्पर्श हमेशा अनमोल रहेगा। भारत में डाक विभाग की स्थापना वर्ष 1854 में हुई थी। तब से लेकर आज तक के डिजिटल दुनिया की रफ्तार में भी चिट्ठी की वो धीमी मधुर बातें आज भी दिल को सुकून देती हैं। राष्ट्रीय डाकदार दिवस पर भारतीय डाक व्यवस्था और उन सभी संदेश वाहकों को नमन जिन्होंने दूरियों को रास्ता बनाया और संदेशों को रिश्तों की मजबूत डोर। उन्होंने धूप देखी, बारिश देखी, लंबी दूरियां तय की और न जाने कितने हाथों में खुशियों के लिफाफे थमा दिए।

दोस्तों, हम अक्सर पूछते हैं ना, कैसे हैं आप? और सामने से जवाब आता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन हर बार मैं ठीक हूँ का मतलब सचमुच ठीक होता है क्या? कभी कभी मुस्कुराता हुआ चेहरा भी भीतर से बहुत बुझा हुआ होता है, और कभी किसी की चुप्पी के पीछे भी बहुत सारी बातें छुपी होती हैं, और कभी इंसान सबसे ज्यादा भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करता है। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ शरीर की नहीं, मन के सेहत की भी बातें करें। जी हाँ, आज यानी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के समर्थन के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। जब मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जाने लगी, तब इसी सोच के साथ वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ यानी WFMH ने पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया, और इस पहल में WFMH के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रिचर्ड हंटर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस विषय का उद्देश्य था मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोगों को शिक्षित करना और मानसिक स्वास्थ्य की आवाज को दुनिया तक पहुंचाना। पहले कुछ वर्षों में इस अभियान को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारण जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1994 से हर वर्ष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए वार्षिक थीम रखी जाने लगी, जो कि इस वर्ष है, लिव्ड एक्सपीरियंस इज हार्ड, रियल वॉइसेस रियल चेंज, यानी वास्तविक अनुभवों को सुना गया, सच्ची आवाजें वास्तविक बदलाव। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं कि हमें कोई मानसिक बीमारी है या नहीं, हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, तनाव और मुश्किल परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं, दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, रोजमर्रा के जीवन को कैसे संभालते हैं, इन सब का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। तनाव महसूस करना, कभी उदास होना या कभी किसी मुश्किल दौर से गुजरना इंसानी अनुभव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब परेशानी लगातार बनी रहे, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे, व्यक्ति खुद को संभाल पाने में कठिनाई महसूस करे, तो मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी।

आज की भागती जिंदगी में हम सब कुछ का हिसाब रखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेरा मन कैसा है। तो आज बस एक पल ठहरिए, अपने मन की सुनिए, अपनों के मन की सुनिए, और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी संघर्ष को शर्म नहीं, संवेदना और समझ की नजर से देखिए, और मुस्कुराते हुए जिंदगी का साथ निभाते चलिए।

जोहर रांची में अब बातें एक और विशेष दिवस की और वो है वर्ल्ड स्पेस डे। हजारों सालों से इंसान ने आसमान की ओर देखा, सितारों को समझने की कोशिश की, चांद को छूने का सपना देखा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इंसान ने सिर्फ आसमान को देखा नहीं, उसकी ओर कदम भी बढ़ा दिया। यही कहानी है अंतरिक्ष की खोज की और इसी अद्भुत यात्रा को याद करने का अवसर देता है विश्व अंतरिक्ष दिवस। दरअसल हर वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। इसके पीछे इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहली 4 अक्टूबर 1957, जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुटनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा। ये छोटा सा उपग्रह मानव इतिहास में बहुत बड़ा कदम था। पहली बार इंसान की बनाई कोई चीज पृथ्वी की कक्षा में पहुंची थी। मानव ने साबित कर दिया था कि आसमान अब सिर्फ

जीतने की चीज नहीं, खोजने की जगह भी है। और दूसरी ऐतिहासिक तारीख है 10 अक्टूबर 1967। इसी दिन आउटर स्पेस ट्रीटी लागू हुई। इस संधि ने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और अंतरिक्ष में देशों की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत तय किए गए। इन्हीं दो ऐतिहासिक घटनाओं की याद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को हर वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक मनाने की घोषणा की। अंतरिक्ष सिर्फ तारों की दुनिया नहीं, आज ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मौसम की जानकारी हो, दूर संचार हो, नेविगेशन हो, एग्रीकल्चर हो, आपदा प्रबंधन हो या पृथ्वी की निगरानी, अंतरिक्ष तकनीक हमारी जिंदगी को कई तरह से प्रभावित करता है। यानी जिस अंतरिक्ष को कभी हम दूर चमकते सितारों के रूप में देखते थे, आज वही अंतरिक्ष हमारी धरती को बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद कर रहा है। और जब अंतरिक्ष की बात हो तो भारत की उपलब्धियों का जिक्र भला कैसे ना हो। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों ने रखी। सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण से लेकर चंद्र और मंगल अभियानों तक दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण 23 अगस्त 2023 का, जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंड किया। ये उपलब्धि सिर्फ भारत के लिए गर्व का क्षण नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रमाण थी कि सबसे बड़े सपने कितने भी बड़े हों तो सीमित संसाधन भी रास्ता नहीं रोक सकते। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हमें सिर्फ उपलब्धियों की याद नहीं दिलाता, ये हमें याद दिलाता है कि इंसान की जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं होती। धरती से आसमान तक, आसमान से चांद तक, चांद से आगे मंगल और उससे भी दूर, हमारी यात्रा तो अभी जारी है।

मौसम अब करवट ले रहा है। सुबह की हवा में हल्की ठंडक और दिन में सुहानी गर्माहट सी है इन दिनों। अगर बातें करें आज के तापमान की, तो आज का तापमान अधिकतम लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वैसे तो मौसम आज साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। आज मौसम सुहाना रहने वाला है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, यानी अभी सर्दी की दस्तक नहीं हुई है। अगर आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन बदलते मौसम के साथ अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखिए। त्योहारों का मौसम है भाई, रांची की फिजाओं में अक्टूबर की नरम धूप और ठंडी होती हवाओं का ये खूबसूरत मेल मौसम को बना रहा है थोड़ा और दिलकश। और मौसम की इस बदलती फिजा में कल से आरंभ होने वाले नवरात्र की उमंग और गर्माहट एक नया एहसास जगा रही है। महालया की गूंज और माँ दुर्गा के जयकारे वातावरण को और भी पावन बना रहे हैं। एक अलग सी ऊर्जा का आभास हो रहा है हवाओं में। जी हाँ, हवाएं माता के आगमन और उनके नौ रूपों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो हम भी तैयार हो जाएं।

ना खपुरा ना छपुरा ना फूस की धरे मड़ैया का खावे खो धरो वहां बस रोवत रहत लड़ैया ना खपुरा ना

और चलते चलते आखिर में बस ये कहना चाहेंगे कि जब जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तब तब शक्ति का प्रकाश हमें राह दिखाता है। माँ दुर्गा का आगमन भी हमें यही संदेश देता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः विजय सत्य और अच्छाई की ही होती है। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आइए अपने भीतर भी प्रेम, करुणा और साहस का एक दीप जलाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वक्त हो चला है जोहार राज्य के पन्नों को यहीं समेटने का, तो कहते हैं जोहार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो रहे हैं और ये वक्त है हमारे श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: आपकी पसंद कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार का लिखा गीत। इस गीत की धुन बनाई है RD बर्मन ने और फिल्म का नाम है घर। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जैतेश मिरक और मीका विरक ने।

अगली फरमाइश हमने ली है पटेल नगर मलोट पंजाब से, रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया की। और इन्होंने सुनना चाहा है रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल को रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं जयदीप साहनी ने और धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। आइए सुनते हैं इस फिल्म से राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार को। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है प्रीतम ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिपा थापा ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और अगली फरमाइश हमने ली है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर की। और इन्होंने सुनना चाहा है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से हर्षदीप कौर, विनीत सिंह और अन्वेषा दत्त को। इस गीत को कलमबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अगली फरमाइश इनकी ये है, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा, और इन्होंने सुनना चाहा है राहत फतेह अली खान को आजा नचले फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं जयदीप सानी ने और धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

राहत फतेह अली खान के गाए इस गीत के साथ ही हमारे श्रोताओं की फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बज चुके हैं, वक्त हो चला है बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ हैं सुभाषिनी और शिल्पी।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली सभी श्रोताओं को सुभाषिनी का सादर नमस्कार। स्वागत है बहनों आप सभी का आपके ही मनभावन कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में।
1: साथ ही स्वीकार करें बहनों आपकी एक और रेडियो सखी शिल्पी का स्नेहिल नमस्कार। आशा है हमारी सभी सखियां स्वस्थ होंगी और पूजा की तैयारी में व्यस्त होंगी।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने शिल्पी, बहनें हमारी पूजा की तैयारी में लगी होंगी, साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग के जो ऑफर जो आ रहे हैं उनकी बरसात जो हो रही है उनमें भी बिजी होंगी, तो बहनें जरूर खरीदारी तो कर ही रही होंगी।
1: लेकिन खरीदारी चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों में सावधानी जरूरी है सुभाषिनी। खास करके सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया में तो सतर्क रहना और भी ज्यादा जरूरी है।
0: हाँ शिल्पी, हमारी दिनचर्या सोशल मीडिया से पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिसके कारण नींद हमारा स्वास्थ्य तो खराब कर ही रहा है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया का ऐसा दौर आ गया है जहां लोग एक ही छत के नीचे एक ही सोफे पर बैठे रहते हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपने अपने स्क्रीन में खोए रहते हैं।
0: और बहनों लगातार बढ़ती स्क्रीन टाइम बच्चों की एकाग्रता को भी कम कर रहा है, वो चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के इस प्रभाव से बच्चे एंजाइटी का भी शिकार हो रहे हैं, उनके मानसिक विकास के लिए ये बेहद ही चिंताजनक है।
1: बिल्कुल सही बात कही। वहीं युवाओं की बात करें तो उनके भीतर एक अजीब सी हीन भावना का घर करने लगी है। यूं कहें हम तो, हम जवान आज अनजाने में ही अपनी तुलना दूसरों से वो करते हैं। आज की भाषा में इसे फोमो यानी पीछे छूट जाने वाला हम डर भी कह सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बिल्कुल सही। और जब सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों पर उनके मुताबिक लाइक्स या कमेंट्स नहीं मिलते तो वे उदास हो जाते हैं और अकेलेपन में चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सी हमारी बहनें भी होंगी जो दिन भर घर के काम और परिवार की देखभाल के बाद जब थोड़ी देर के लिए फोन उठाती हैं तो रील स्क्रॉल करते करते एक से एक दो घंटे कैसे बीत जाते हैं ये पता ही नहीं चलता।
0: हाँ, ये तो एकदम सही बात कह रही हो शिल्पी तुम। और बहनों नतीजा क्या होता है, रात की नींद अधूरी रह जाती है, सुबह उठते ही सर भारी रहता है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, यानी आज ज्यादातर लोग डिजिटल तनाव की गिरफ्त में हैं।
1: बिल्कुल, तो इससे छुटकारा पाने का उपाय तो हमें ही ढूंढना चाहिए, है ना बहनों। इसके लिए आप ऐसा कर सकती हैं कि आप डाइनिंग टेबल पर कोई फोन नहीं लेकर जाएं और खाते समय सिर्फ आपस में बात करें। और हम हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं अपने कार्यक्रम में कि जब सब परिवार एक साथ हो तो अपने अपने फोन को एक जगह पे रख देना चाहिए।
0: इसी तरह हम बच्चों और युवाओं के दोस्त बने, अगर वो उदास दिखें तो सोशल मीडिया के आभासी दोस्तों की बजाय हम उनके असली दोस्त बने।
1: बिल्कुल, घर में जो हमारे बड़े हैं उन्हें केवल फोन के भरोसे न छोड़ें, उनके पास बैठें, उनके अनुभव और पुराने जमाने की बातें करें और उनसे कुछ सुनें। जब हम सब मिलकर हंसेंगे बातें करेंगे तो किसी भी सदस्य का मानसिक स्वास्थ्य कभी डगमगाएगा नहीं। और हमेशा इस बात का भी ख्याल रखें कि जो भी आपके पसंद का गीत है या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पसंदीदा गीत है उसे आप सुनें और उन्हें सुनाएं।
0: हाँ बहनों, अपनी रियल लाइफ को जिए, वर्चुअल लाइफ को बस एक साधन रहने दें।
1: बिल्कुल,
0: आप खुद भी स्वस्थ रहें और अपने पूरे परिवार के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। तो शिल्पी, बातें तो हमारे पास अभी और भी हैं और बहुत सारा हमारे पास समय भी है, बहनों के लिए मनोरंजन भी हम लेकर आए हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बहनों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज के सफर में हम दो संख्या हैं, मैं शिल्पी और साथ हमारे हैं सुभाषिनी। और सुभाषिनी, आज का दिन बेहद खास है, और ये कौन सा दिन है ये सखियों को याद होगा,
2: बिल्कुल
1: है ना।
2: और बहने ये भी जान रही होंगी कि सुभाषिनी है तो सुभाषिनी के गीत भी जरूर होंगे। तो बहनों, दुर्गा पूजा कल से तो शुरू हो रही है और दुर्गा पूजा का पावन त्यौहार आ चुका है, हम सब जान रहे हैं। और हर तरफ पंडाल भी सज चुके हैं, माँ की बेहद सुंदर और भव्य मूर्तियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। जब हम पंडालों में या मंदिरों में माँ दुर्गा की भव्य मूर्तियाँ देखते हैं, जिनके 10 हाथ, हर हाथ में एक एक अस्त्र और चेहरे पर एक असीम तेज और ममता दिखाई पड़ती है, तो दिल श्रद्धा से भर जाता है। तो आइए बहनों, माँ के इस भजन के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

लता मंगेशकर की मखमली आवाज और माँ दुर्गा के इस भजन ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ का स्वरूप हमें क्या सिखाता है? मूर्तिकार जब मिट्टी से माँ के रूप को गढ़ता है तो वो एक आम नारी की असीमित क्षमताओं को दिखाता है। यानी अगर देखा जाए तो आज की नारी के भी 10 हाथ हैं। वो एक हाथ से घर संभालती है, दूसरे से बच्चों को पढ़ाती है, तीसरे से दफ्तर का काम करती है, यानी अनेकों काम करती है, और जरूरत पड़ने पर समाज की बुराइयों के खिलाफ ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। बेजान मिट्टी में प्राण फूंकने वाले उन कलाकारों को, हर घर में निस्वार्थ भाव से जुटी उस गृहलक्ष्मी को हमारा नमन है। तो बहनों, हम अपने भीतर की दुर्गा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला चेहरा जो हमारी आंखों के सामने आता है वो है हमारी माँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। जब वो बीमार होता है, रात रात भर जागती रहती है। उसके भीतर की वो ताकत, वो धीरज, वो त्याग क्या किसी देवी से कम है? हम अक्सर भगवान को ढूंढने मंदिरों और पंडालों में जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि साक्षात देवी हमारे घर में है। माँ की इसी ममता और अनमोल रिश्ते को याद करते हुए आइए सुनते हैं ये बेहद और प्यारा खूबसूरत सा गीत।

बहनों, आज के दौर में भी हमारे आसपास ऐसी कई दुर्गा हैं जो रोज समाज की रूढ़ियों, बंदिशों और मुश्किलों के रूप में आए असुरों से लड़ रही हैं। इनके पास कोई तलवार या त्रिशूल नहीं है, लेकिन इनके हौसले और इनकी हिम्मत ही इनके सबसे बड़े हथियार हैं। बहनों, त्योहारों का असली मजा तो तब है जब हम उनके पीछे छिपे संदेश को अपने जीवन में उतारें। हम 9 दिनों तक कन्या पूजन करते हैं, देवियों के पैर छूते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन जैसे ही दशमी आती है, माँ की विदाई होती है, हम फिर उसी पुरानी सोच में लौट जाते हैं। लेकिन सखियों, सच्ची पूजा तो तब होगी जब हम साल के 365 दिन आसपास की हर महिला को वो सम्मान, वो सुरक्षा और वो बराबरी का हक दें जिसकी वो हकदार हैं। उनके सपनों को उड़ने के लिए खुला आसमान देना ही माँ दुर्गा की सबसे बड़ी भक्ति है। तो आइए, हमारी जो गृह लक्ष्मी है, हमारी जो नारी है, और हम अपने आप को ही ये गाना समर्पित करते हैं।

0: बहनों, इस गीत के बाद सुभाषिनी के गीत अब यहीं ख़त्म होते हैं और शुरू होता है शिल्पी का आंगन। तो बहनों, आप सभी को शिल्पी के आंगन का इंतज़ार होगा, आइए शिल्पी से मुखातिब होते हैं।
1: बहनों, यादों की पोटली खोलते हैं, उसमें बचपन के सपने यादें, खट्टी मीठी बातें फिर से आज जाग उठती है। तो आज हम अपने आंगन में लिए चलते हैं आप सभी सखी सहेलियों को। हमारे जीवन में पर्व त्योहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और हर एक त्योहार के पीछे कोई न कोई संदेश निहित भी होता है। आज हम दशहरा को लेकर उत्साहित हैं। यह वह पर्व है जो हमारे बचपन की ओर खुलने वाली एक खिड़की होता है, वह आंगन जहां सब परिवार जुटने का मौका ढूंढते थे। दादी माँ आंगन के बरामदे में ही चरपाई लगाकर सभी भाई बहनों को किस्से कहानियां सुनाती थीं। मुझे याद है महालया की सुबह सुबह, चाहे हम बच्चे हों या बड़े, सबको सुबह के 4 बजे ही उठना होता था, क्योंकि दादी माँ रेडियो सेट पर महालया सुनती और घर के मुख्य द्वार को, यानी जो मेन दरवाजा होता था, खोल देती थीं। कहती थीं कि इसमें पानी के छींटे मार दो। हम भाई बहन नींद से ऊँगते रहते। उस समय शायद यह समझ नहीं थी कि इन छोटी छोटी परंपराओं में हमारी संस्कृति की इतनी बड़ी विरासत छिपी है। हम तो बस इतना जानते थे कि 10 दिन गांव में मेला लगेगा, खिलौने हम खरीदेंगे, आंगन में खुशियां उतरी है तो पकवान भी बनेंगे।

किसके आंगन में खिला है। फिर क्या था, मानो पंख लग गए। खूब सारे फूल तोड़कर दादी माँ के आंचल में भर देती। चारपाई पर बैठे बैठे दादी माँ फूलों की माला को बड़े ही प्रेम से गूंथती और करीने से एक एक फूल को सजा देती। कैसे कट जाता था वह 10 दिन पता ही नहीं चलता। घर घर से सुबह शाम की आरती सुनाई देती, कहीं शंख की ध्वनि, फिर महाअष्टमी के बाद हवन की घर घर में तैयारी होती, फिर विजयदशमी। दशहरे के दिन आंगन में रिश्तेदारों का एक दूसरे के घर आना जाना। हमारी दादी माँ विजयदशमी का आशीर्वाद का तिलक सभी को लगाती, चाहे बच्चे होते या बड़े। फिर मेले घूमने के लिए धीरे से कुछ पैसे जेब में डाल देती। सच वो भी क्या दिन थे। फिर हम सब भाई बहन उन पैसों से मेले घूमते, रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदते, तो कभी स्वाद का चटकारा लगाते। तारा माछी का डर तो होता था, लेकिन फिर भी उसका आनंद हम जरूर लेते। इतना ही नहीं, हम बच्चे जरूर थे पर स्थानीय खरीदारी खूब करते थे। लकड़ी के फूलदान, पेंसिल स्टैंड, मिट्टी के बने जानवर खूब सारे बटोर कर घर में लाते और आंगन में फैला देते। सच बचपन के दिन और मेले की खरीदारी तो स्मृति पटल पर आज भी वैसे ही धाग जमाए बैठी है जैसे मानो ये कल की ही बात हो। बस फर्क इतना है कि अब दिल बच्चा बनना चाहता है, पर जाना होगा फिर उसी गांव में, खुले आकाश में, बड़ा सा आंगन में। तारों के बारात आज भी सजते हैं वहां, सातों तारे अभी भी उसी तरह टिमटिमाते हैं। दादी माँ रात में जब सुलाती थी तो कहती थी कि देखो ये 7 तारे नहीं 7 भाई हैं। सखियों ऐसा था हमारे बचपन का आंगन। और फिर अगली कड़ी में आपसे कुछ और लेकर आऊंगी अपने आंगन से जुड़ी हुई बातें।

0: और बहनों, शिल्पी का आंगन तो आपने सुना और अब विदा लेने का भी आपसे वक्त आ चुका है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी
1: बिल्कुल,
0: चाहिए।
1: क्योंकि प्रकृति का हर बदलता रंग अपने साथ एक नया मौसम, नई उमंग, नई चुनौतियां लाता है। आप हमारा इशारा समझ गई होंगी कि बदलते मौसम में आप सावधान रहें।
0: बिल्कुल, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। इसी के साथ

0: हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, आपके सखी सुभाषिनी
1: और शिल्पी को दें इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। मीडियम वेव 548.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आते हैं शैक्षिक प्रसारण। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे वार्ता, परीक्षा के समय तनाव और छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य। वार्ताकार हैं किरण सिन्हा, प्रस्तुति सहयोग सुनीता कुमारी की है और प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।
3: बच्चों, परीक्षा कागजों पर लिखे उत्तरों की होती है, यह तुम्हारे धैर्य, अनुशासन और मेहनत की परीक्षा होती है। परीक्षा का दबाव हर विद्यार्थी महसूस करता है, लेकिन यही दबाव आपको अपनी असली क्षमता पहचानने का मौका देता है। हार मत मानो, मेहनत करते रहो। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। परीक्षा का तनाव छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे चिंता, अनिद्रा और आत्मविश्वास में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। परीक्षा के तनाव में अनेक लक्षण बच्चों में देखने को मिलती है, जैसे अत्यधिक घबराहट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और बार बार मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होना। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। परीक्षा भवन में बैठते ही बच्चों के पेट में तकलीफ होना, लगातार थकान महसूस होना और घबराहट में भूल जाना। ऐसे समय में माता पिता एवं शिक्षक को बच्चों को समझाना चाहिए कि खुद पर भरोसा रखो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तुम सक्षम हो। आत्मविश्वास से पढ़ाई करो और मन लगाकर कार्य करो। डर को दिल से निकाल लो, पढ़ाई को अपना हथियार बना लो। सफलता अवश्य प्राप्त करोगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। तनाव कम करने के अनेकों उपाय हैं, जो बच्चों को बताना चाहिए कि परीक्षा के लिए अगर अच्छी तरह से तैयारी करना है तो आप सारणी बनाएं, समय सारणी को अच्छी तरह से तैयार करें, विषय वस्तु को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें और बीच बीच में थोड़ा आराम भी कर लिया करें। प्रातःकाल उठकर योगा भी करें, ध्यान लगाकर मेडिटेशन करें। ऐसा करने से आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा, डर भी नहीं लगेगा और तनाव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट स्टडी और पक्का इरादा जीत का यही है सच्चा वादा। परीक्षा के समय माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों से खुलकर बातचीत करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उनका समाधान बताएं, क्योंकि लंबे समय तक तनाव में रहने से स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होता है। बच्चा हर समय बेचैनी महसूस करता है और अज्ञात डर से घबराया रहता है। तनाव बच्चे में अकेलापन की भावना उत्पन्न करता है, वह चिड़चिड़ा हो जाता है, खुद को असहाय महसूस करता है। तनाव के हार्मोन का स्तर बढ़ने से किसी भी काम में बच्चे का ध्यान केंद्रित नहीं होता है, उनमें नई चीजों को सीखने या पुरानी चीजों को याद करने की क्षमता कम हो जाती है। दिमाग शांत नहीं रहने की वजह से वह सही फैसला नहीं ले पाता है। बार बार होने वाला तनाव, रक्त संचार प्रणाली विशेष रूप से हृदय गति के रुकने का भी खतरा रहता है। दीर्घकालीन तनाव भी बीमारियों का कारण बन जाता है, शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जिससे बीमारियों में से उबरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभिभावक गण, शिक्षक गण, आपसे नम्र निवेदन है कि बच्चों में होने वाली एग्जाम फोबिया या परीक्षा के तनाव को बढ़ने न दे। बच्चों को समझाएं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए बच्चों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ो। आज की मेहनत ही कल की पहचान बनती है, जैसे सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। बच्चों से तनाव के कारण का पता करें, किस विषय में समस्या है उस पर चर्चा करें, समस्या का समाधान ढूंढकर बच्चों को तनाव मुक्त करें। पहली बात है उम्मीदों का बोझ। माता पिता और समाज की यह मानसिक धारणा है कि उनका बच्चा सबसे अच्छा करे, सबसे आगे जाए, अपने बच्चों की तुलना पास पड़ोस के सगे संबंधियों के बच्चों से करना शुरू कर देते हैं। ये तो गलत बात है ना। बच्चों को उसके अंदर की प्रतिभा को उभरने दे। इसी दबाव में बच्चे गलत तरह से तैयारी करने लगते हैं और वे पूरे साल तो पढ़ाई करते नहीं, और जब परीक्षा की तारीख नजदीक आने लगती है तब वे पूरा कोर्स एक साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। याद रखे अभिभावक गण, थोड़ा तनाव तो बच्चों में आना स्वाभाविक है, लेकिन जब यही तनाव बच्चे की नींद, भूख और सोचने की शक्ति को खत्म करने लगे तो उस समय ध्यान देना जरूरी हो जाता है। बच्चों, जितना कठिन अभ्यास होगा उतना ही शानदार परिणाम होगा। बच्चों, लगातार 4 घंटे मत पढ़िए, 25 मिनट तक मन लगाकर पढ़िए, 5 मिनट तक छोटा सा ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, आंखें बंद कीजिए, मनन कीजिए या खिड़की से बाहर देखिए। इससे दिमाग चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रखता है। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ना। आज की मेहनत ही कल की पहचान है, ये कभी मत भूलना बच्चों। बच्चों, परीक्षा से एक दिन पहले रात भर जागना सबसे बड़ी गलती है। हमारा दिमाग सोते समय भी पढ़ी हुई बातों को हमेशा के लिए याद करता है, इसलिए सोना भी पढ़ाई के लिए उतना ही जरूरी है। बच्चों, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर मन में कोई बात मत रखिए। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त, बड़े भाई बहन, माता पिता या शिक्षक से बात कीजिए, अपनी समस्या बताइए, समाधान अवश्य ही मिलेगा। पढ़ते समय 1 घंटे में 2 मिनट के लिए उठिए, थोड़ा टहलिए, गहरी सांस लीजिए, 4 सेकंड सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड रोकिए, 4 सेकंड बाहर छोड़िए। इससे घबराहट तुरंत कम हो जाएगी। बच्चों, एक परीक्षा की तैयारी आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करती है। इसी पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, असफलता कभी मुझे हरा नहीं सकती, असफल होना सफलता की ओर का पहला कदम है। परिणाम जो भी हो, आपकी मेहनत और आपका अनुभव हमेशा आपके साथ रहेगा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। शांत मन और दृढ़ विचार, यही है परीक्षा को जीतने का हथियार। इसीलिए डर से मत पढ़ो, रुचि से पढ़ो। ज्ञान डर से नहीं, प्रेम से।

0: आता है। इसी तरह महान राजनीतिज्ञ चाणक्य जी का संदेश है, परीक्षा के समय घबराना नहीं, धीरज रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। बच्चों की मेहनत पर नहीं, उनकी कोशिश पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों से यह नहीं पूछना चाहिए कि कितने नंबर आए, बल्कि यह पूछना चाहिए कि तुम ठीक हो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि आपकी ईमानदारी और मेहनत नंबर से कहीं ज्यादा जरूरी है, बड़ी है। बच्चों की शिक्षा तनाव मुक्त हो, इसलिए सरकार ने भी NEP न्यू शिक्षा पॉलिसी लाई। घर का माहौल बदले, हर पल उनकी पढ़ाई का नहीं कोशिश का सम्मान करे। जैसे तुमने मेहनत की, यही बड़ी बात है। ये वाक्य बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ा देता है। बच्चों के मन में जो डर है, उनसे कहें कि वो अपना सारा डर एक कागज पर लिखकर उसको फाड़ दे। ऐसा करने से बच्चों का डर खत्म हो जाएगा और उनका मन हल्का हो जाएगा। अब आप देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन की ही बात करते हैं, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी कहा है कि हर बच्चा प्रतिभाशाली होता है, बस उसकी प्रतिभा को पहचान कर सही राह दिखाना है। अब आप वैज्ञानिकों के जीवन को ही देखिए। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्हें स्कूल से यह कहकर बाहर निकाल दिया गया था कि यह बच्चा बहुत कमजोर है, पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वह अपनी सभी परीक्षा में फेल हो जाते थे। पर उन्होंने, यानी थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। मतलब कि परीक्षा में एक बार फेल होना नहीं है। अब बच्चों, इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, वे ज्यूरिख पॉलिटेक्निक की परीक्षा, प्रवेश परीक्षा में फेल हो गए। वे गणित और विज्ञान में तो टॉपर थे, पर बाकी विषयों में कम नंबर लाए। शिक्षक ने कहा, यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। बाद में उन्होंने अपनी मेहनत से सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अब बच्चों, डॉक्टर कलाम के जीवन को ही देखिए। कलाम साहब एयरफोर्स में पायलट बनने की परीक्षा में फेल हो गए थे, उसके बाद वे भारत के राष्ट्रपति बने। तो इसी तरह हम महान गणितज्ञ श्री रामानुजन जी की बात करते हैं, जो कॉलेज की परीक्षा में अंग्रेजी और गणित में फेल हो गए थे, क्योंकि वे सिर्फ गणित ही पढ़ते थे। कॉलेज से उन्हें निकाल दिया गया, पर गणित में उनके फर्मूले आज भी पूरी दुनिया में रिसर्च कर रहे हैं उनके फर्मूले पर। विज्ञान क्या कहता है परीक्षा के तनाव पर? तो सुनिए, विज्ञान कहता है कि तनाव हमारी तैयारी के लिए अच्छा है, पर हमें एक्टिव रखता है। जैसे साइकिल चलाते समय थोड़ा डर संतुलन बनाता है, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव हानिकारक होती है। तो बच्चों, एडिसन, आइंस्टाइन और कलाम जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक परीक्षा की मार्कशीट हमारी किस्मत तय नहीं करती है, बल्कि परीक्षा हमारे ज्ञान को परखती है, हमारे जीवन को नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि परीक्षा तो जीवन की हर घड़ी में देना पड़ता है, लेकिन यह तनाव को बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि यह केवल शैक्षणिक मूल्यांकन का एक माध्यम है। किसी भी छात्र की योग्यता उनके पूरे जीवन का पैमाना नहीं है। आज के समय में परीक्षाओं का बढ़ता दबाव छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, जिसे केवल संयुक्त प्रयासों से ही सुधारा जा सकता है। जैसे कि बच्चों को घर और स्कूल दोनों जगहों पर डर का माहौल नहीं होना चाहिए। हर बच्चा प्रतिभाशाली होता है, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए। शैक्षणिक प्रदर्शन से ज्यादा जरूरी है बच्चों का समग्र विकास हो। इसलिए विद्यालयों में भी कौशल बोध का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों की समस्या को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि वे अकेला खान पान और मनोरंजन के कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए बच्चों को समझाना चाहिए कि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना है। उन्हें यह बताना है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य परीक्षा से महत्वपूर्ण है। परीक्षा तो बस एक मूल्यांकन विधि है। शिक्षा की जड़ें तो कड़वी होती है परंतु फल मीठा होता है, इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए परीक्षा तो देनी ही पड़ती है।
1: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों में सबसे पहले आपको हम सुनवा रहे हैं रामलीला फिल्म से अरिजीत सिंह को। गीत की बोल लिखे हैं सिद्धार्थ गरिमा ने और धुन बनाई है संजय लीला भंसाली ने।

दृश्यम टू, आइए सुनते हैं इस फिल्म से जुबिन नौटियाल को। गीत के बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है देवीश्री प्रसाद ने।

आइए सुनते हैं समीर अनजान का लिखा गीत शान की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है मोंटी शर्मा ने और फिल्म का नाम है सांवरिया।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। 1 बजने को है, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
1: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: श्री चौहान ने उपचुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल, असम, पुदुचेरी में भाजपा और एनडीए को शानदार जीत मिली है। इससे पहले राजस्थान और त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जनता ने भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनादेश स्पष्ट है, देश का संकल्प विकसित भारत का निर्माण करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी साझा करेंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सोमवार को अहमदाबाद में ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये खेल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये खेल प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक आदान प्रदान, विरासत संरक्षण और खेल के माध्यम से जन सहयोग को बढ़ावा देंगी। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच पुरुषों का तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर में खेला जाएगा।

0: रांची से बोल रहे हैं। 1:10 हो चुके हैं। वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचार का।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन में किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का किया आह्वान। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे देवघर, एम्स के दीक्षांत समारोह और सैन्य संपर्क मेले में हुए शामिल। झारखंड में एसआईआर के तहत अब तक फॉर्म 6 के 7,68,000 और फॉर्म 8 के 5,00,000 से अधिक आवेदन हुए डिजिटाइज। आज सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क। महालया पर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में हो रहे कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और रांची विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में सिमडेगा कॉलेज ने बिरसा कॉलेज को 3-1 से हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देवघर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और देवघर विधायक सुरेश पासवान भी शामिल हुए हैं। उपराष्ट्रपति बीबीएमटी अस्पताल में आयोजित सैन्य संपर्क मेले में भी शामिल होंगे। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक फॉर्म 6 के 7,68,924 और फॉर्म 8 के 5,06,957 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने, सुधार और स्थानांतरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी। आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क के साथ बीएलओ बीएलए2 की 4थी बैठक आयोजित की जा रही है। लोहरदगा से कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को रद्द करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।
2: ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की बात केवल नहीं है, पूरे संवैधानिक संस्थान है, उसको भी हमें ठीक करना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि बैलेट पेपर के चुनाव में भी आप दिक्कत खाते हैं, तो इस बार चुनाव बैलेट पेपर से भी चुनाव करा लो ना, क्या दिक्कत है। पूरी व्यवस्थाओं को बहुत ही सुनियोजित तरीके से उन्होंने अपने सत्ता में बने रखने के लिए कैसे करोड़ों भारतीयों का नाम काटा वो बताए।
1: भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य आज रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और इसी को लेकर वे ठोस रणनीति पर चर्चा करने आए हैं।
3: झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। राहुल गांधी को लगता है कि जनता के बीच में काम किए बिना सत्ता मिल जाए, इसलिए वो इसकी अराजकता का काम करे। जो कई चुनाव हार चुके हैं तब वो अराजकता पे उतर आए हैं। और देश की संस्थाओं को तो सबसे ज्यादा किसी ने रौंदने का काम किया तो कांग्रेस सरकार ने किया है।
1: गिरिडीह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कुछ शक्तियां देश में अराजकता फैलाना चाहती हैं। गिरिडीह उपचुनाव को लेकर आदित्य साहू ने भाजपा की जीत का दावा किया।
4: गिरिडीह के उपचुनाव में गिरिडीह विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इस सीट को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सीट हम जीतेंगे, कमल फूल खिलेगा।
5: श्री साहू ने कहा कि झारखंड सरकार जेपीएससी परीक्षा में जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है।
1: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज की इस विशेष श्रृंखला का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस मिशन के माध्यम से समस्त नागरिकों में देश के प्रति एकता और दूसरे राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है।
6: भारत की एकता अखंडता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। बिना एकता हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी सशक्त नहीं कर पाएंगे। देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, संवैधानिक पदों का सम्मान, समस्त नागरिकों के प्रति समान भाव, उनके प्रति संवेदना देश की एकता को बल देते हैं। आज के इस समय में हमें देश की एकता के खिलाफ काम कर रहे प्रत्येक तत्व पर नजर रखनी है, ये भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व है।
1: झारखंड का सरायकेला खरसावां ऐसा जिला है जहां के लोग अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहे हैं। दूसरे राज्यों से आकर रहने वाले लोग भी स्थानीय लोगों के सहयोग से यहां की भाषा सीख पा रहे हैं। यहां हिंदी और स्थानीय बोलियों के साथ संताली, उड़िया, बांग्ला समेत कई भाषाओं का प्रभाव सुनाई देता है।
7: सरायकेला जिला सिर्फ छऊ नृत्य और लोक कला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग अपने अलग अलग वेशभूषा, भाषा, खान पान, परंपराओं के साथ रहते हैं, आपसी भाईचारा का अटूट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत को परिलक्षित करता है के आधार को मजबूती प्रदान करता है।
8: दूसरे राज्य से यहाँ आए हूँ। शुरू में यहाँ की भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत अपनापन दिया। अब मैं यहाँ के कई शब्द समझने लगी हूँ और यहाँ के लोग भी हमारे भाषा के कुछ शब्द बोल लेते हैं। इसमें यह लगता है कि भाषा अलग होने के बावजूद भी हमारे बीच की दूरी नहीं है।
1: महालया के साथ आज देवी दुर्गा का आवाहन किया जा रहा है। महालया के अवसर पर रांची के दुर्गाबाड़ी में आज शाम महिषासुर मर्दिनी नाटक का मंचन किया जाएगा। इसके साथ ही कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। इधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में महालया की शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,33,000 रुपए प्रति किलो है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत 12 से 15 अक्टूबर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने विश्व डाक दिवस पर यह जानकारी दी। श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान फिलैटली कार्यशाला, डाक चौपाल, बिजनेस मीट और तकनीकी नवाचार से जुड़ी गतिविधियां होंगी।
9: 3 जिला कवर करता है सिंहभूम पोस्टल डिवीजन। ये सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां, तो 8 अनुमंडलों में बंटा है। तो सभी जगह दो दो डाक चौपाल हम लोग कर रहे हैं, ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं के बारे में बताने का, सरकारी योजनाओं को बताने का, और स्कूल में आधार कैंप कर रहे हैं।
1: रांची विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता 2026-27 का खिताब सिमडेगा कॉलेज ने जीत लिया है। सिमडेगा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सिमडेगा कॉलेज ने बिरसा कॉलेज खूंटी को 3-1 से हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन में किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का किया आह्वान। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे देवघर, एम्स के दीक्षांत समारोह और सैन्य संपर्क मेले में हुए शामिल। झारखंड में एसआईआर के तहत अब तक फॉर्म 6 के 7,68,000 और फॉर्म 8 के 5,00,000 से अधिक आवेदन हुए डिजिटाइज। आज सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क। महालया पर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में हो रहे कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और रांची विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में सिमडेगा कॉलेज ने बिरसा कॉलेज को 3-1 से हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:21 हो रहे हैं। इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खमाज में ठुमरी। कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी। कार्यक्रम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हो रहे हैं और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के गाए चंद गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं अख्तर वाजदी की लिखी गजल। फनकार हैं हरिहरन।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की गाई गजलें। आइए अब आपको सुनवाते हैं फरहाद शहजाद की लिखी गजल, क्या खबर थी कि मैं इस दर्जा बदल जाऊंगा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को है, आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

0: लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।

0: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
4: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
5: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
4: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
1: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम

0: करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
1: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
0: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाश में हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इस गीत की धुन बनाई है अजय अतुल ने और फिल्म का नाम है तानाजी द अनसंग वॉरियर।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। और जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं नक्श लियालपुरी का लिखा गीत रूना लैला की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है जयदेव ने और फिल्म का नाम है घरौंदा।

थोड़ी सी बेवफाई, यह है फिल्म का नाम। और आइए सुनते हैं इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन बनाई है खयाम ने।

आइए अब सुनते हैं गुलजार का लिखा गीत आरती मुखर्जी की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है मासूम।

0: आरती मुखर्जी के गाए इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा देश के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए, यह बात उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में कही। उन्होंने एम्स देवघर को समावेशी विकास का प्रतीक बताया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने एमबीबीएस, नर्सिंग, एमडी और एमएस के स्नातकों को डिग्रियां सौंपी और 11 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सांसद डॉ निशिकांत दुबे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन पर शोक जताने आज केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद पप्पू यादव उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। नेताओं ने रूपी सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। गिरिडीह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कुछ शक्तियां देश में अराजकता फैलाना चाहती हैं। गिरिडीह उपचुनाव को लेकर आदित्य साहू ने भाजपा की जीत का दावा किया। श्री साहू ने कहा कि झारखंड सरकार जेपीएससी परीक्षा में जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है।
1: गिरिडीह के उपचुनाव में गिरिडीह विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इस सीट को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सीट हम जीतेंगे। कमल फूल खिलेगा। यहाँ
0: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में राज्य के विभिन्न जिलों के सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क कैंप का विशेष आयोजन किया जा रहा है। जामताड़ा में 722 आयोजित कर मतदाताओं के दावों तथा आपत्तियों का ऑन द स्पॉट निपटारा और दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विमानपतन निदेशक विनोद कुमार ने एक प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि एयरपोर्ट पर 17 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक चले 24 दिवसीय विशेष यात्री सेवा अभियान का सफल समापन हो गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हवाई सफर करने वाले यात्रियों को अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना था। जमशेदपुर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत 12 से 15 अक्टूबर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने विश्व डाक दिवस पर यह जानकारी दी। श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान फिलाटेली कार्यशाला, डाक चौपाल, बिजनेस मीट और तकनीकी नवाचार से जुड़ी गतिविधियां होंगी।
2: तीन जिला कवर करता है सिंहभूम पोस्टल डिवीजन। ये सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसा से 8 अनुमंडलों में बंटा है। तो सभी जगह दो दो डाक चौपाल हम लोग कर रहे हैं, ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं के बारे में बताने का, सरकारी योजनाओं को बताने का, और स्कूल में आधार कैंप कर रहे हैं।
0: महालया के साथ आज देवी दुर्गा का आवाहन किया जा रहा है। महालया के अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। रांची के दुर्गाबाड़ी में आज शाम महिषासुर मर्दनी नाटक का मंचन किया जाएगा। इसके साथ ही कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में महालया की शुभकामनाएं दी हैं। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इंटर डिविजनल बास्केटबॉल और वॉलीबॉल चैंपियनशिप संपन्न हो गई, जिसमें 380 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बास्केटबॉल महिला वर्ग में ओएमक्यू और पुरुष वर्ग में एईएम की टीम विजेता बनी। वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में टीएसजी ऑप्स ने चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह शेखावत ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं और ये वक्त है आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ फिल्म संगीत। दोस्तों, आज जानी मानी अदाकारा रेखा जी का जन्म दिवस है, तो आज का ये प्रोग्राम हम उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। कहते हैं कुछ लोग अपनी पहचान बनाने के लिए जमाने के पीछे चलते हैं और कुछ अपनी पहचान से जमाने को अपना दीवाना बना लेते हैं। हिंदी सिनेमा की ऐसी ही एक शख्सियत हैं रेखा।

नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तक सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुमंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा

रेखा एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी आंखों की खामोशी से भी संवाद किया, अपनी मुस्कान से जादू बिखेरा और अपनी अदाकारी से हर किरदार को यादगार बना दिया। खूबसूरत की चुलबुलाहट हो या सिलसिला का भावनात्मक अंदाज या फिर उमराव जान की नजाकत, रेखा ने हर भूमिका में अपने हुनर के नए रंग दिखाए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित रेखा ने साबित किया कि असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि व्यक्तित्व और प्रतिभा में होती है।

कहा जा सकता। उनकी शख्सियत में कशिश है, उनकी आवाज में एक ठहराव और उनकी अदाकारी में एक ऐसी गहराई जो दशकों बाद भी दर्शकों को बांधे रखती है। रेखा सिर्फ एक नाम नहीं, भारतीय सिनेमा का वो सुनहरा अध्याय है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती।

शायद यही कि उन्हें हर बार शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी आंखें बोलती हैं, उनकी खामोशी कहानी कहती है, और उनका अंदाज़ अपने आप में एक मुकम्मल दास्तान बन जाता है।

रेखा की अदाकारी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो गंभीर किरदारों में जितनी असरदार नजर आती हैं, हल्के फुल्के अंदाज में भी उतना ही दिल जीत लेती हैं। रेखा ने ऐसी कई फिल्में की जिसमें अपनी चुलबुली अदाओं और सहज अभिनय से उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।

सिनेमा की दुनिया में कुछ चेहरे सिर्फ पर्दे पर नजर नहीं आते बल्कि दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ऐसी ही शख्सियत हैं रेखा।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा तक। आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। भाग लेने वाले विशेषज्ञ हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रही हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच चिनाब नदी के उफनते पानी से 359 मीटर ऊपर टिकी एक विशाल फौलादी मेहराब का, जहां कभी पहुंचना महज एक सपना था, वहां आज भारत की तरक्की की ट्रेन फर्राटा भर रही है। सोचिए पंबन के नीले समुद्र पर खड़े उस पुल के बारे में, जो जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र के सीने पर किसी विशाल पंख की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है, या कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले उन चमचमाते एक्सप्रेसवे का, जिन्होंने दूरियों को सिर्फ किलोमीटरों में नहीं वक्त के पैमाने में भी आधा कर दिया है। ये केवल कंक्रीट क्रेन और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जिसने चुनौतियों को संभावनाओं में बदला, जिसने भारत के भूगोल को एक नए भारत के भविष्य से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी ही बदलाव की कहानी की ओर। प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार।
3: ये फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं।

0: यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा।
1: श्रोताओं, जब किसी राष्ट्र के महान बनने की गाथा लिखी जाती है तो उसकी नींव में उसकी रीढ़ यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। पिछले वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो गति, पैमाना और इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है, उसने न केवल देश की कनेक्टिविटी बदली है बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। इसी अभूतपूर्व कायाकल्प और इसके दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और इस पूरे विजन के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों के विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी।
1: मिश्र जी, आपके साथ शुरू करते हैं। और पिछले करीब एक दशक में भारत ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखा है। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बढ़ा है या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका भी बदला है? खासकर पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए क्या अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह देखने की सोच बन रही है?
2: बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा कि पहले हमारे लिए रोड रोड थी, रेल रेल थी, या हवाई अड्डे थे जहाँ पे कुछ पैसेंजर जाते थे, कुछ गाड़ियां चलती थी, कहीं पे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच, जो शहरों को जोड़ करके, स्थानों को जोड़ करके, लोगों की मोबिलिटी को करके, फ्रीट के मूवमेंट को, अनेकल मूवमेंट ही नहीं बल्कि उसको कितने सस्ते, अफोर्डेबल तरीके से उसको कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा नया व्यवस्था बनाया है पिछले 10-12 सालों में कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सारी सारी बुनियादी सुविधाएं एक नए स्वरूप ले रही हैं। और वो स्वरूप है हमारा विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। 2047 आजादी का 100वीं सदी मना रहे होंगे, 100वीं वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश जो विकसित होगा उसके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एयरपोर्ट में ले लीजिए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की संख्या आज दूने से ज्यादा हो गई है, और केवल एयरपोर्ट की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि एयरपोर्ट पे चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक साधारण सा आदमी जो कि कभी सोच नहीं सकता था, वो उड़ान इस योजना के तहत अब उसको कहीं से कहीं, देश में लगभग 95 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे उड़ान योजना के अंतर्गत वो चल के जा सकता है। तो उसको एक नई चीज, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो देख करके लगता है कि ये क्या है, ये नया भारत है। आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जिस प्रकार से न केवल हमारे जितने डबल ट्रैक उसको बनाया गया बल्कि लगभग 99% से ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 100% ये सारा सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया और उसमें स्पीड पे ध्यान दिया गया। आज काफी करीब 80% ट्रैक हमारे ऐसे जिसके ऊपर 110 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चल सकती है, तो स्पीड पे ध्यान दिया गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया, पीपुल्स कन्वीनियंस जो हम कभी सोचते नहीं थे, चाहे शौचालय से लेकर के आपको पावर पॉइंट प्लग जिससे कि आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सके, आपके जो है खाने पीने की सुविधा हो सके, सारी की सारी हर तरह से, और स्पीड तो है ही, अफोर्डेबिलिटी, जैसे एक आनंद हमारी जो अमृत भारत से ट्रेनें चली अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उस पर ध्यान दिया गया, तो वंदे भारत ट्रेनें चली जिसको स्पीड के ऊपर ध्यान दिया गया, एक अमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा, या फ्रीट कॉरिडोर में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, तो मुझे लगता है कि पूरी सोच में बदलाव आया। आप मेट्रो का नेटवर्क का देख लीजिए, जो मेट्रो कभी थोड़े से शहरों में हुआ करता था, हम इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे, तो एक छोटे शहर में जो करके आज हमारे लगभग 30 शहरों में मेट्रो चल रही है और तमाम सारे शहरों में चल रही है। पहले बार हमारे देश में रैपिड रीजनल ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, जो नमो भारत के नाम से जो पहली शुरुआत हुई, तो ये एक नई सोच है कि कैसे हम व्यक्तियों के जो हमारे काम करने के, चाहे कारखाने से लेकर के उत्पादन के केंद्रों से लेकर के व्यवसायिक केंद्रों से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि आज हम अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे बल्कि हम दुनिया के लिए बना रहे, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, तो उसको कैसे हम जहाज रानी के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक नई आर्थिक सोच जो पिछले 10-12 साल में बढ़ी है, और मुझे लगता है कि ये विकसित भारत का बहुत बड़ा एक बुनियाद उसको आगे रंग देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए तैयार हुआ है।
1: रवि जी, अगर एक एक करके बिंदुओं पर आएं और सबसे पहले शुरुआत सड़क से करते हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क जो 91,287 किलोमीटर था वो बढ़कर लगभग 1,46,572 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। फोर लेन हाईवे

0: की संख्या बढ़कर लगभग 45,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि 2014 के बाद से जो ये परिवर्तन हुआ है आम नागरिक के जीवन में, ये जो आंकड़े हैं बढ़े हुए, इनका वास्तविक मतलब क्या है और देश की प्रगति में इनके क्या मायने हैं?
1: आनंद जी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के दैनिक रोजमर्रा के जनजीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। दूरियां घटी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारी चीजें हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को अच्छी मंडियों तक लाना ले जाना, इलाज के लिए अच्छे अस्पतालों तक पहुंच बढ़ना और बहुत सारे स्तरों पर अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि देश में सड़कों का जाल एक तरह से बिछ रहा है और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2014 में जो भी प्रतिदिन सड़क निर्माण का आंकड़ा था वो अब बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर रोज हो गया है, उल्लेखनीय वृद्धि है। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग थे देश में, उनकी कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी। अभी 2025-26 में ये आंकड़ा 146,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये करीब परसेंटेज में देखें तो ये 61% बढ़ोतरी है
0: जी।
1: ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। गति शक्ति मास्टर प्लान
0: जी,
1: इसका उल्लेख करना हमें यहाँ पर बहुत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना में सड़क, रेल और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जैसे दुर्गा शंकर जी ने कहा, साधनों को, सारे जो यातायात के साधन है उनको एकीकृत किया गया है और इसका बहुत बड़ा फायदा अलग अलग सेक्टर्स को बिल्कुल मिला है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आई है, देश के चारों कोनों में हर जगह एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनसे दूरियां बहुत घट गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 1,350 किलोमीटर है और दिल्ली से मुंबई जाएं या मुंबई से दिल्ली के बीच हम एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करें बाय रोड तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में ये सफर संभव है। अब ये कितना बड़ा अंतर है, जो यात्रा आप 24 घंटे में कर पाते थे वो अब करीब करीब आधे समय में आप कर सकते हैं, तो न केवल समय की बचत है बल्कि ऊर्जा की भी बचत है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंजीनियरिंग के, भारतीय इंजीनियरिंग के जो अद्भुत चमत्कार हैं वो भी आप देखेंगे। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट जो है संभव हुए, तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो अंग्रेजों के शासनकाल में 1914 में शुरू हुआ था उसका बनना, और करीब करीब इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। जंग लगने की वजह से और कुछ पुराना पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब जो नया पंबन ब्रिज बना है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अटल सेतु की बात कर ले, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। जो समुद्र पर इसका हिस्सा बना है उसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन का अटल सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई तक 20 मिनट में इसके जरिए जो यात्रा करते हैं इसके माध्यम से, उसमें केवल अब आजकल 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे लगते थे और इसकी लागत थी 17,840 करोड़ रुपए। इसी तरह सुदर्शन सेतु को ले, भारत का सबसे लंबा केबल स्ट्रे ब्रिज है ये। गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर ये सुदर्शन सेतु स्थित है। ओखा को बेट द्वारका से ये जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। लागत आई थी करीब 979 करोड़ रुपए। ये 4 लेन का पुल है और दोनों किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिस पर वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसका लाभ बहुत सारे सेक्टरों को मिल रहा है।
0: मिश्रा जी, अगर सड़क से सफर को आगे बढ़ाएं और रेल की तरफ चलें, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया अमृत भारत स्टेशन का, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही साथ नमो भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें चली हैं उससे यात्रा समय में तकरीबन 30-40% की समय की कमी आई है, जो आप स्पीड की भी बात कर रहे थे। सवाल यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और देश की जीडीपी में इस आधुनिक कनेक्टिविटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसके पहले इसको बात करूं, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो पराशर जी बोल रहे थे। देखिए, पहले दिल्ली से मैं रहने वाला हूं पूर्वांचल का। दिल्ली से अगर आपको बलिया

0: या आजमगढ़ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था। समझे कि पूरा दिन भर आपको नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लग जाते थे। और आज आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक एक्सप्रेसवे है जो कि मुश्किल से 5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं, और वहां से अगले 3-3.5 घंटे में 4 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। जो दूरी हम लगाते थे 20-20 घंटे लगा देते थे, वो हम 9 घंटे के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते। उसका क्या नतीजा निकला? आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था तो पहले पूर्वांचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां कोई सामान ले जाना अपने आप में बहुत दूर हुआ करता था। आज पूर्वांचल में तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बुंदेलखंड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस प्रकार से कनेक्टिविटी जोड़ा है हाईवे के, नेशनल हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेस वे के माध्यम से, या तमाम सारे इंजीनियरिंग मार्वल जिसका भी जिक्र कर रहे थे, जैसे अटल सेतु की बात कर रहे थे, अटल सेतु में उसको सेतु नहीं लेता हूं मैं, उसको समझता हूं कि दो इकोनॉमिक सेंटर, दो ग्रोथ सेंटर, एक तरफ तो मुंबई है, दूसरे नवी मुंबई है, या आगे चलिए पुणे का देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उसने एक बिल्कुल नया चीज ला दिया। मैंने आर्थिक विकास के लिए जो हम जब, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारा ये पाई, इकोनॉमिक पाई बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारे देश के लोगों की समृद्धि, लोगों की जीवन की जो स्तर में, उसमें सुधार नहीं हो। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हमारा एक्सप्रेसवे, हाईवेज और इसके माध्यम से भारत सरकार कर रही है, और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी इसके ऊपर काफी सारा, आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमाम सारे जगह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब आपका जहां तक रेल का सवाल है, रेल में देखिए कि पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक संदेश है कि पहले चीजों को स्केल अप करिए, पहले चीजों को नई टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर स्पीड अप करिए, और फिर स्केल, बड़े ऐसे स्केल जो कि संभव न हो, स्किल स्पीड एंड देन स्केल। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक हमारा लगभग 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया, रेलवे जो नए ट्रैक बने हैं, पिछले जो अगर हम देख रहे थे, जो डाटा देख रहा था, जो पिछले 10 साल में बनाते उससे दूने से ज्यादा जो पिछले 10 साल में बना, यानी उस रफ्तार से बना। और उसमें रेल में वंदे भारत से जो चला, वंदे भारत से इतना सारा जो जुड़ रहा है, बहुत हाई स्पीड। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इसकी जो वंदे भारत की जो ट्रेन है, वो हम विदेशों से, पहले तो इस तरह की चीजें विदेशों से लाते थे, कितना हमारा पैसा खर्च होता था, कितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज लगता था, आज सब कुछ चीजें हमारे देश बन रही है। न केवल हमारे जो कोचेज बन रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, या सारा का सारा चीज हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब एक तरफ तो हमने स्पीड लाई, दूसरे तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जगह जगह अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रेन, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, स्पीड भी और सारी फैसिलिटीज भी, सिक्योरिटी के भी, जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारा जो कवच का जो सिस्टम, आज तेजी से कवच का पूरा प्रसार हो रहा है
1: जी।
0: अब ट्रेन का तो एक तो डिस्टेंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे शहरों के भीतर एक जो नेटवर्क होता है मेट्रो का, अब मेट्रो नेटवर्क हम 2014 में केवल 5 शहर में 250 किलोमीटर भी नहीं था, आज करीब 1150 किलोमीटर मेट्रो हमारे 26 शहरों में चल रहा है, और जो काम चल रहा है अदर 1000 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और लगभग हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं तो उस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रहा हूं, जिस प्रकार से आज हम मेट्रो कोचेज जो ले रहे हैं, सारे के सारे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, हम विदेशों में अपने कोचेज, यहाँ के हिंदुस्तान के बने कोचेज विदेशों में, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब कोई हमारे पास एक ट्वीट करता था, ब्रिस्बेन से ट्वीट कर रहा है, कोई जोहान्सबर्ग से कर रहा है, कोई कनाडा के शहर से कर रहा है, कि हम आज मेड इन इंडिया कोच में बैठे हुए, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और जो पहला जो हमारा एक, पहले तो हम ये मेट्रो को लेकर के इतने सारे शहरों के भीतर कनेक्टिविटी किए, अब शहरों से शहरों के बीच में, जैसे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो हमारा नमो भारत, अब 82-83 किलोमीटर की दूरी करीब 15 स्टेशनों पर रुकते हुए आप केवल 55 मिनट में कर लेते, कहां 3 घंटे पहले लगते थे, 55 मिनट में कर सकते हैं, और इससे उसका क्या फायदा हुआ, आज उसके बीच तमाम सारे ग्रोथ सेंटर बनने चालू हो गए, तमाम सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पूरा का पूरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो सोच कनेक्टिविटी तो एक बेसिस है, लेकिन कनेक्टिविटी के आधार पर आर्थिक उन्नयन
1: जी,
0: कैसे लोगों की, हम अपने बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग की, लोगों की अदर एक्टिविटी को बढ़ा करके कैसे लोगों का जीवन का स्तर को सुधार करें।
1: बिल्कुल ठीक बात है। रेल की चर्चा को थोड़ा रवि जी आपकी तरफ मोड़ते हैं, और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की बात करें, या देश के पहले केबल स्टेड अंजी खड ब्रिज, और भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण की बात करें, यह सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तो है ही, साथ ही यह सामरिक और भौगोलिक दुर्गमताओं पर भारत की तकनीकी विजय है। आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कठिन प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग विल पार और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति को किस तरह साधा गया, और इसे देश में कितना बड़ा बदलाव

0: अब देखने को मिला।
1: देखिए आनंद जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी योजना परियोजना हो, इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो वो पूरी नहीं हो सकती। अभी दुर्गा शंकर जी ने बताया कि दैनिक यात्रियों की रोजमर्रा की जीवन में मेट्रो रेल बहुत उपयोगी है। शहर टू शहर, छोटे शहर से छोटे शहर तक रैपिड रेल यानी नमो भारत जो सेवा शुरू की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और देश के दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे के इंजीनियरों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। आपने चिनाब रेलवे ब्रिज का उल्लेख किया, पहले कितने लंबी यात्रा होती होगी जब ये रेलवे ब्रिज नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है और ये एफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है। लागत इसमें आई 1486 करोड़ रुपए की और इसकी मजबूती इतनी है कि ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर अगर कोई 8 की तीव्रता तक भूकंप आता है उसको भी ये सहज ही झेल सकता है। इसके अलावा आपने अंजी खड्ड ब्रिज का उल्लेख किया। इसकी विशेषता ये है कि ये भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल के सहारे लटका हुआ पुल है। कटरा और रियासी को ये पुल आपस में जोड़ता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है, ऊंचाई नदी तल से 331 मीटर है। इसमें 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य स्तंभ नींव से 193 मीटर ऊंचा है और इसकी क्षमता है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ये झेल सकता है। वो इस रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। एक और दक्षिण भारत के ऐसे ही अद्भुत पुल की बात कर लें, ये है पाम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको नया स्वरूप दिया गया, नया बनाया गया। जो अब नया पुल बना है ये पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आधुनिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। डबल ट्रैक वाला ये ब्रिज, इस पर ट्रेनें 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकती हैं। जब आपने बताया, उल्लेख किया कि जब कोई जहाज निकलना होता है पुल के रास्ते से तो ये अद्भुत तकनीकी क्षमता है इस पुल की कि 5 मिनट के अंदर पूरा पुल दो हिस्सों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो ऊंचे समुद्री जहाज हैं वो इसके रास्ते से निकल जाते हैं और फिर अगले 5 मिनट में इसको वापस पुल की शेप में लाया जा सकता है।
2: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। रेलवे के बाद अगर एयरपोर्ट की चर्चा करें मिश्र जी, तो और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो धौलेरा एक्सप्रेसवे बना या जो धौलेरा एयरपोर्ट बना उसको भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से विकसित किया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कुछ समय पहले तक, अगर 2014 से पहले की बात करें, तो सरकारी लाल फीताशाही बहुत ज्यादा चरम पर थी, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए कि ये बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए? साथ ही साथ ये जो धौलेरा एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी, इससे भारत का वैश्विक स्तर पर कितना समृद्ध प्रभाव पड़ा? और जो हम निवेश की बात करते हैं कि विदेश से निवेश आए, उसमें एयरपोर्ट्स ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई?
3: बिल्कुल ठीक आपने कहा, धौलेरा एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है
2: जी।
3: धौलेरा एक ऐतिहासिक स्थान है, लोथल का आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है जुड़ा हुआ वो स्थान है। मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां किसी समय इतना बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था, इतनी सारी समृद्धि उस जमाने में, बहुत सारे बीट्स के काम दुनिया भर से वहां का संबंध हुआ करते थे। आज वहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहां पे जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट वहां के सड़क धौलेरा के लिए बन गई है,
2: धौलेरा एक्सप्रेस वे।
3: अभी हाल में जो कैबिनेट के डिसीजन के साथ एक अप्रूवल किया गया, एक वहां पे भी रेल लिंक, भी फास्ट रेल लिंक भी जो है अहमदाबाद से डायरेक्टली वहां धौलेरा से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक भी सैंक्शन कर दी और वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब धौलेरा जो है एक बहुत बड़ा स्पेशल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहां पे आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, तमाम सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को मतलब कि जुड़ने का मतलब बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है
1: जी।
3: आज एक वो नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा है, और केवल धोलेरा की कहानी नहीं है बल्कि उसके जैसे आज देश में तमाम सारे जो नए नए एयरपोर्ट्स बने, जो 174 मैंने आपने बताया कि 64 से करके 74 से बढ़ करके 160-170 के आसपास आज एयरपोर्ट बन गए हैं और सारे चालू हो गए हैं। उन एयरपोर्ट्स पे अब जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है
1: जी,
3: या गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है
1: जी,
3: जेवर का जो नया एयरपोर्ट बना है, आपका चित्तूर का वहां साउथ का जो एयरपोर्ट बना है, जो गोवा में एक अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना, मोपा का जो एयरपोर्ट बना
1: जी, कैंपागोड़ा,
3: हाँ मैंने इतने सारे देश में जो एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट से हमने दुनिया से कनेक्टिविटी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हैं, तो दुनिया से अपने आप को जोड़ा हमने, लॉजिस्टिक्स को बहुत सारा, इससे हमारा काफी सारा जो है इससे जो व्यापार होगा, व्यापार हमारे इसमें काम आएगा, और एक आम आदमी के लिए जिस प्रकार का जो एक एयर फेयर हो गया है, आम आदमी को भी क्योंकि समय बचाना है उसको, उसके लिए भी उतना मत पड़े। तो वो जो आपने जो बात कही, एक हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई सफर कर रहा है, एक देश का एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई है।
2: रवि जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बतौर पत्रकार आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इस देश में हैं, और हम उड़ान योजना की बात कर रहे हैं, और अब उड़ान 2.0 की भी बात हो रही है जिसमें और सुविधाएं आम नागरिकों को मिले। हमने ये भी देखा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली सुविधाओं को भी आम नागरिक के ध्यान में रखकर बहुत बदलाव किए हैं, चाहे वो वहां पर फूड आइटम्स के प्राइस को कम करना हो या फिर पैसेंजर्स के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध कराना हो। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखते हैं
1: आप? आनंद जी, जमीनी स्तर पर एक पत्रकार के तौर पर जो मेरे अनुभव है, मेरा करियर 1988-89 में पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ था, और उस समय मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो मेरा वेतन था उससे मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है और जो मेरी स्थिति है, आज मैं जब चाहूं समय बचाने के लिए हवाई यात्रा मेरी सीमा में, मेरी जेब की सीमा में, तो ये फर्क बहुत धीरे धीरे आया है, और पिछले 10-12 साल से बहुत तेजी से हम देख रहे हैं। आपने बताया कि 2014 में हवाई अड्डे केवल 74 थे, अभी 165 हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले क्या होता था कि आप घर के पास हवाई यात्रा करने के लिए भी आपको सड़क से बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं करनी पड़ती थी, जो स्थिति आज नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया, 15 जून 2026 से यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से छोटे छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बनाई गई है, तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनके लिए, और दूर दराज विदेश से आने वाले और दूर दराज के क्षेत्रों से राजधानी NCR क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा की कितनी सुगमता हो गई है, कितनी सुलभता हो गई है, ये आज देखने को हमें मिलता है। और हवाई अड्डों, जो पुराने हवाई अड्डे थे, इस सरकार ने केवल उनकी क्षमता ही नहीं बढ़ाई, उनकी साज सज्जा, उन पर जैसे आपने कहा कि खान पान की सुविधाएं, उनका जो लुक भारतीय विरासत और भारतीय संस्कारों से जीवंत रहे, ऐसे प्रयास भी किए। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर पिछले 12 साल के अनुभव मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग पहले हवाई यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते थे अपने बजट के हिसाब से, वो आज हवाई यात्रा की कल्पना, अगर उन्हें कहीं अपेक्षाकृत जल्दी पहुँचना है, तो कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अब चर्चा करते हैं सागरमाला की। श्रोताओं, सागरमाला के 5 प्रमुख पिलर्स हैं: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा आपसे सवाल है वो वाटर मेट्रो को लेकर है। 2026 में यानी इसी वर्ष नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया गया। सवाल ये है, और बहुत सारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं, कि जो वाटर मेट्रो की पहल है, एक तो उससे भूमि अधिग्रहण की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, उसमें भी हम कई सारे पेंच देखते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना वाइबल है भारत जैसे देश में? क्या इसको एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ा जा सकता है? क्या है इसकी वर्तमान स्थिति, और वास्तविक धरातल पर कब हम इसे देखने वाले?
3: बहुत अच्छी बात कही आप आनंद जी आपने। ऐसा है जैसे मेट्रो आया, मेट्रो का क्या मकसद है कि शहर में आप हर किलोमीटर पे आपके स्टेशन हो, 800 मीटर से लेकर के 1000 बार से, कि कहीं से कहीं पहुंचना तो आप जो है 10-12 मिनट में आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच सकते हैं
0: जी।
3: उसे पूरा शहर आज दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, तो दिल्ली में कितना आसान हो गया, ट्रेवल कितना आसान हो गया और भी बढ़ रहा है। अभी नए उसका जो फेज 5 का उसके मेट्रो का काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ

0: ऐसे शहर हमारे देश में है जहाँ पे या तो समुद्र या वहाँ पे पानी का नेटवर्क बना हुआ है
1: जी।
0: अब वहाँ पे पहले क्या होता था कि पुराने जमाने वाली जो बड़ी बड़ी बोट चलती थी और वो आराम से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रफ्तार से चली करती थी, आपको घंटों लग जाता था, कोई सुविधा नहीं होती थी धूप में और उसमें आप परेशान होते थे
1: जी।
0: मेट्रो ने क्या लाया, मेट्रो आपको कम्फर्ट लाया, कनेक्टिविटी लाया, आपको जो पंक्चुअलिटी लाया
1: जी,
0: आपकी चीजों को आसान कर दिया, उसके उसके पूरी तरह से जा सकते हैं। पहले जो इन शहरों में क्या होता था, कोची शहर में, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार का सेक्रेटरी था इसी मिनिस्ट्री का और हमारी उसमें हम ये सब सारा का सारा चीज डेवलपमेंट हो रहा था, तो आप कोची में अगर आप देखें तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूरी तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की होगी, 1.5 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपको 2500-300 किलोमीटर जाना पड़ता था उसका समुद्र का जो अंदर गया, उसे 30 किलोमीटर जाकर के आपको घंटों लग जाते थे
1: जी।
0: अगर इसको ऐसा आपको महसूस हो जाए कि जो वहां पे स्टेशन बना हुआ वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन टाइप का, एयर कंडीशन है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, सारी की सारी सुविधाएं हैं और आपको कंफर्ट है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहे कुछ खरीदना चाहे सारी की सारी फैसिलिटीज है
1: जी,
0: ऐसा स्टेशन अगर आपको बन जाए तो आप कहीं से कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं
1: जी।
0: अब तो काफी कुछ चीजें हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं, उस समय इस चीज को कोची में डेवलपमेंट शुरू किया गया और आज मुझे खुशी है कि वहां पे 20 स्टेशन में इस प्रकार के कंफर्टेबल बोर्ड्स और रेलवे स्टेशन वगैरह तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए नया अवसर पैदा हो गया और नया अवसर ये पैदा हो गया कि इसके हिसाब से अब आप हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में करीब 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और उसमें कई सारे जगह पे इस प्रकार की चीजें हैं, तो अगर जहां पे है तो वहां पे ऐसे 18 शहर चुने गए हैं जहां पे इस प्रकार की वाटर मेट्रो की सुविधा हो सकती है। इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि केवल वाटर मेट्रो के अलावा अब एक नई चीज पहले बार देश में होने जा रहा है, उसमें अगेन मैं एज ए सचिव मुझे मौका मिला काम करने का, भारत में पहले बार हमको ट्रांसपोर्ट को एयर के माध्यम से यानी रोपवे, अभी तक हमारे देश में रोपवे का उपयोग होता था, वो कोई धार्मिक स्थान है वहां पे जाने के लिए लोगों को केवल टूरिस्ट पर्पज से, बकायदे आप अपना सामान लेकर के कहीं से कहीं आप जा सकते हैं और बनारस में बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि ये जो रोपवे जो बनेगा
1: जी,
0: ऐसे शहरों में बहुत कंजेशन आज लैटिन अमेरिका के कई सारे शहरों में, यूरोप के कई सारे शहरों में रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पे
1: जी।
0: ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया चीज और पहले बार उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहला हमारा देश का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि शुरू होने जा रहा है।
2: कार्यक्रम में समय कम है, एक एक सवाल आप दोनों से बहुत संक्षेप में। रवि जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि वहां भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है, किस तरह देखते हैं इस बदलाव को?
3: आनंद जी देखिए, पिछली सरकारों की जो नीति थी उस नीति को बिल्कुल मोदी सरकार ने उलट दिया है। मुझे याद है कि 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करती है केंद्र सरकार कि कहीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और उसका फायदा हमारे दुश्मन न उठा लें, इसलिए जैसा है दूभर को दूभर बना रहने दीजिए। लेकिन 2014 में अगले साल मोदी सरकार केंद्र में बनते ही ये नीति बिल्कुल आमूलचूल बदल दी गई और अब स्थिति ये है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, वहाँ सुरंगों का विकास, अटल टनल और बहुत सारी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो आपातकाल में बिगड़े हुए मौसम में सेना के आवागमन को बहुत सुगम बनाती हैं, बहुत सारे बंकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को जो बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं, सड़कें बहुत मजबूत और पक्की बनाई जा रही हैं और इसके अलावा जो हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, हम वहां भी देखते हैं कि उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि हमारे हवाई जो हमले करने में सक्षम जो विमान है, लड़ाकू विमान
1: जी,
3: उन पर टच लैंडिंग कर चुके हैं यानी उतर सकें अगर ऐसी स्थिति हो तो। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के मामले में मोदी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है और पिछली सरकारों के तमाम नीतियों के उलट ये काम अब वहां हो रहा है।
2: मिश्रा जी, कार्यक्रम के समापन में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है इस देश में, उससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कितना हमें आसानी होने वाली है?
0: मैं इसके पहले एक और चीज जोड़ना चाहूंगा जो फ्रीट कॉरिडोर, क्योंकि हमने अभी तक मोबिलिटी जो है पैसेंजर मोबिलिटी की ज्यादा बात की, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनकर के लगभग तैयार हुआ, 2,800 किलोमीटर ज्यादा है, इससे पूरा का पूरा एक हमारा फ्रीट ईस्ट से लेकर वेस्ट से लेकर के ये सारा इतना बड़ा ये फेसिलिटी

0: भी बन गई और नया इसके बाद फिर से अभी सूरत से लेकर के दुला वो भी प्रारंभ किया गया, उसको शुरुआत का अनाउंस किया गया। तो देश में हमारा लॉजिस्टिक का मूवमेंट इतना आसान किया गया जिससे लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत हमारा कम हो जाएगा। देखिए कोई भी देश आगे बढ़ता तब जबकि उसके लिए ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे लोगों का मूवमेंट आसान हो जाए, गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाए, सारा का सारा प्रोसेसेस हमारे आसान हो जाए और वो सब कुछ बन करके तैयार है या तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखिए हम बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% हम वहां पहुंच चुके, तैयार होता हुआ दिख रहा है और ये सारा का सारा जो धरातल तैयार की जा रहा है ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, वो हम विकसित होकर के रहेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक तरफ हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ हम जितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज है, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, हर तरह की हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब चीजों को बिल्कुल आसान कर दे, मैंने ये लुब्रिकेशन कहेंगे कि इकोनॉमी को लुब्रिकेशन लुब्रिकेट कर रहा है। एक और भी बड़ा इसका इम्पोर्टेंट पहलू है, ये सारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बड़े लेवल पे रोजगार क्रिएट हो रहा है
1: जी,
0: और उस रोजगार के क्रिएट होने से लोगों की इनकम बढ़ रही है
1: जी।
0: तो एक इनकम तो इकोनॉमी के ग्रोथ से हो रहा है, दूसरा इसके वजह से तमाम सारे हमारे जो नौजवान है, जो हमारे युवा ज्योति, जो नए आजकल के बच्चे पढ़कर निकल रहे, उनके लिए इतना बड़ा रोजगार का साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको नए साधन क्रिएट कर रहा है। ये हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जन सेवा से देश सेवा की बात है, वो इस प्रकार की चीज करके आज देश को हमारे एक नए लेवल पे, एक नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: बिल्कुल, जब बुनियादी ढांचे के पहिए तेजी से घूमते हैं तो पूरे देश की प्रगति को नई रफ्तार मिलती है। आज भारत सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आपका, रवि पाराशर आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आनंद जी।
2: ये थी बुनियादी ढांचे की वो नई रफ्तार जो आज भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है और देश को आत्मनिर्भरता के साथ साथ समृद्धि के मार्ग पर आगे भी बढ़ा रही है। जनसेवा से देश सेवा की इस विशेष श्रृंखला के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा तक। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और बेहतर आचरण बेहतर व्यक्तित्व। कार्यक्रम के सूत्रधार हैं युवराज कुमार, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

जोहर, नमस्कार और स्नेहिल अभिवादन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी, जहां हर मुलाकात में है नई जानकारी, हर चर्चा में है नया विचार और हर गीत में छिपा है दिल को छू लेने वाला एहसास। मैं हूं आपका दोस्त युवराज और अगले कुछ समय तक हम साथ बिताएंगे ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा से भरपूर एक खूबसूरत रेडियो यात्रा पर। आज के कार्यक्रम में होगी एक विशेष भेंट वार्ता, जिसमें हमारे सम्मानित अतिथि से जानेंगे कई महत्वपूर्ण बातें। इसके साथ होगी रोचक चर्चाएं और मन को सुकून देने वाला चुनिंदा गीत, जो इस सफर को और भी यादगार बना देंगे। तो देर किस बात की, अपने काम करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू हो रहा है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी। तो मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए खास है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर। मित्रों, हर वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और मानसिक परेशानियों को लेकर समाज में मौजूद झिझक तथा गलत धारणाओं को दूर करना है। श्रोताओं, जिस तरह स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद और व्यायाम जरूरी है, उसी तरह स्वस्थ जीवन के लिए मन का स्वस्थ रहना भी बेहद जरूरी है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पढ़ाई, नौकरी, आर्थिक चिंता, पारिवारिक जिम्मेदारियां, रिश्तों में तनाव और बदलती जीवन शैली के कारण कई लोग मानसिक दबाव महसूस करते हैं। कभी कभी हम उदासी, चिंता, चिड़चिड़ापन या तनाव को सामान्य मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। थोड़े समय के लिए ऐसा महसूस होना जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यदि ये परेशानियां लगातार बनी रहे और हमारे दैनिक जीवन, पढ़ाई, काम या रिश्तों को प्रभावित करने लगे, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना उपयोगी होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल मानसिक बीमारी का ना होना ही नहीं है, इसका अर्थ यह भी है कि हम अपनी भावनाओं को समझ सके, तनाव का सामना कर सके, दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बना सके और जीवन की परिस्थितियों से संतुलित तरीके से निपट सके। ऐसे में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। घर में यदि कोई व्यक्ति परेशान या तनावग्रस्त दिखाई दे, तो उसे डांटना या किसी समस्या को छोटा समझने की बजाय उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। कई बार किसी व्यक्ति को समाधान से पहले सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उसकी बात बिना किसी पूर्वाग्रह के सुने। बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। पढ़ाई का दबाव, परीक्षा, दोस्तों से जुड़ी समस्याएं, पारिवारिक परिस्थितियां या सोशल मीडिया का प्रभाव उनके मन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए माता पिता और शिक्षक बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें और उनकी भावनाओं को महत्व दें। श्रोताओं, हमें यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी कमजोरी नहीं है। जैसे शरीर बीमार होने पर डॉक्टर की मदद ली जाती है, वैसे ही मानसिक परेशानी होने पर मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना सामान्य और उचित कदम है। हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें अपना सकते हैं। नियमित दिनचर्या रखें, पर्याप्त नींद लें, अपनी पसंद की स्वस्थ गतिविधियों के लिए समय निकालें, परिवार और मित्रों से बातचीत करें, शारीरिक गतिविधि करें और अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझने और साझा करने का प्रयास करें। और सबसे जरूरी बात, किसी व्यक्ति की मानसिक परेशानी का मजाक ना बनाएं, उसे अकेला महसूस ना कराएं और बिना समझे कोई निर्णय ना दें।
हमारा थोड़ा सा सहयोग किसी के लिए बहुत मायने रख सकता है। आइए इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हम संकल्प लें कि हम स्वयं भी अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपने परिवार तथा समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता, संवेदनशीलता और सहयोग का वातावरण बनाएंगे। याद रखिए, स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन भी खुशहाल जीवन की पहचान है। मन की बात कहना कमजोरी नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी है। श्रोताओं, अभी आपने सुनी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनेक कारणों में आज के समय में सोशल मीडिया भी एक महत्वपूर्ण विषय बनकर सामने आया है। सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को एक दूसरे के करीब जरूर लाया है। हम कुछ ही क्षणों में देश दुनिया की खबरें जान सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं और लोगों से जुड़ भी सकते हैं। लेकिन इसके अत्यधिक या असंतुलित उपयोग का हमारे मन

0: और व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना तनाव, चिंता या नींद जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है? बच्चों और युवाओं पर इसका क्या असर पड़ सकता है और सोशल मीडिया का स्वस्थ तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुरजीत प्रसाद और इनसे बातें करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है। लोग सोशल मीडिया में अपनी चर्चाएं, अपनी बात और तरह तरह की जानकारियां एकत्रित करते हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया पर आप लगातार बैठते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लगातार आपकी उंगलियाँ मोबाइल पर नाचती रहती हैं या आप लैपटॉप पर बैठे रहते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं और तरह तरह की जानकारियाँ, जो जानकारियाँ आप लेना भी नहीं चाहते हैं वो जानकारियाँ आप लेने लग जाते हैं, तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ जाता है और कैसे इन सब चीज़ों से हम बचें और अपना स्वास्थ्य को हम ठीक रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्ते सर।
1: डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया आजकल जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हर लोग, चाहे वो छोटा बच्चा हो, युवा साथी हो या फिर हमारे बुजुर्ग हो, सोशल मीडिया मोबाइल लगातार चलता रहता है और तरह तरह की जानकारियाँ वो एकत्रित करते रहते हैं, तो इसका मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया कितना दोनों में संबंध है?
2: सोशल मीडिया, जैसा आपने बताया, सोशल मीडिया अब हमारे ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग सा बन गया है। जैसे किसी भी चीज़ की अगर आप एक्सेस यूज़ करेंगे तो वो हार्मफुल है, उसी तरह ये चीज़ सोशल मीडिया पे भी लागू होता है। अगर आप उसका नियंत्रित उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए सोशल मीडिया के कारण बहुत तरह की फिज़िकल एज वेल एज मेंटल दोनों तरह की दिक्कतें होती हैं, इसीलिए सोशल मीडिया का मेरे हिसाब से उनका एक नियंत्रित उपयोग करना आवश्यक है, जिससे कि हम उसका लाभ उठा पाए, हमारे ऊपर वो उसकी उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े।
1: क्या क्या इसके दुष्प्रभाव दिखने लग जाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार ये अपना प्रभाव छोड़ जाता है?
2: जी, सोशल मीडिया बहुत तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है आजकल, वो है नींद। आजकल हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि लोग सोने जाते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, स्टार्ट यहीं से होता है। और ये बहुत सारे रिसर्च आए हैं जिसमें ये पाया गया है कि नींद के समय अगर आप सोशल मीडिया या स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके माइंड को ना एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, और नींद के समय अगर माइंड स्टिमुलेशन में जाएगा तो नींद हमें कम आएगी। तो बहुत बार देखा गया है कि जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नींद के समय करते हैं, उन्हें नींद की कमी आती है। उसके अलावा बच्चों में स्पेशली अगर वे सोशल मीडिया का नियंत्रित यूज़ नहीं है तो बच्चे बहुत तरह के मानसिक रोग से ग्रसित हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर छोटे बच्चे, जैसे अभी कॉमनली हमने देखा है कि बच्चों को खिलाने के लिए माताएं मोबाइल दिखाना स्टार्ट करती हैं, उसमें बहुत बार सोशल मीडिया के रील्स भी होते हैं, तो बच्चों को रील्स की आदत हो जाती है। अब क्या होता है कि बिना रील्स देखे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, तो इस तरह से बच्चे का ना एक तरह से एडिक्शन हो रहा है। और ये प्रूवन फैक्ट है हमारे मनोरोग में कि जिस तरह से बाकी लोग चीज़ों का एडिक्शन होता है, जैसे शराब हो गया, नींद की गोली हो गई, गांजा भांग, उसी तरह सोशल मीडिया का भी एडिक्शन होता है। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ रही है आजकल के बच्चों में। और ये भी देखा गया कि अगर छोटे बच्चों से उसका उपयोग कर रहे हैं लोग, तो उनमें जो डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट, ये सब बहुत डिले हो रहा है। तो अक्सर मरीज इनके आते हैं और इस तरह की बातें हमें बताते हैं। इसके साथ साथ ये देखा गया कि जो भी मानसिक रोग, जो कॉमन मानसिक रोग है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया के यूज़ के कारण कहीं ना कहीं बढ़ रही है, इनके इंसिडेंस में इजाफा हो रहा है।
1: छोटे बच्चे अवसाद का भी शिकार हो जा रहे हैं, लगातार घंटों घंटों आप सोशल मीडिया पर बैठे रह जाते हैं और जानकारी आप तक बहुत नहीं पहुंच पाती है, आप बहुत ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते हैं, आप तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं और तुरंत उसको स्क्रॉल भी कर जाते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसा आपने बताया,

0: दिन ही आना। खाने के समय छोटे छोटे बच्चों को माताएं पिताएं मोबाइल पकड़ा देते हैं, जो एक गलत स्थिति पैदा करती है। तो कैसे इन सब चीज़ों से बचा जाए? डॉक्टर साहब, हमारी ज़रूरत हो गई है इंटरनेट, हर चीज़ इंटरनेट के सहारे है, बाज़ार की सभी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से हम घर तक पहुंचा लेते हैं, तो कैसे हम नियंत्रित करें इन सब चीज़ों को?
1: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसा मैंने आपने भी बोला, मैंने भी बोला कि इंटरनेट हमारा एक अभिन्न अंग बन गया है
0: जी
1: हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, तो इसलिए हमें इसका जो रेगुलेशन है, कैसे उसको रेगुलेट कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी ये सलाह रहती है लोगों को कि इंटरनेट या सोशल मीडिया, इनका एक संतुलित उपयोग आपको करना होगा। जैसे मे बी एट इन लीजर टाइम आप उसे कर सकते हैं, या सोशल मीडिया या का उपयोग आप आपस में कनेक्टिविटी के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप कॉल हो रहा है फैमिली के साथ, सब फैमिली जो ग्रुप कॉल्स होते हैं, या आप ग्रुप चैट करते हैं इस फेसबुक में, तो ये सब चीज़ें उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ये एक तरह से फ़ायदा है इंटरनेट का, कि ये आपस में आपको कनेक्ट करे जो लोग दूर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके दुष्प्रभाव उससे भी ज़्यादा हैं। अगर आप अनरेगुलेटेड यूज़ कर रहे हैं तो आपको समय की हानि हो रही है, आपको तरह तरह के मानसिक और शारीरिक विकार हो रहा है। अब इससे बचा कैसे जाए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें लिमिटेड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया करना होगा, वो फिक्स है, वो करना ही होगा हमें। उसके लिए एक टर्म है, एक हम लोग टर्म यूज़ करते हैं डिजिटल कर्फ्यू। वो है कुछ नहीं, बस उसमें कहा यह गया है कि रात में सोने के समय सोशल मीडिया का यूज़ ना करें। ये एक हो गया। दूसरा, जो सोशल मीडिया लोग क्यों यूज़ करते हैं, बहुत लोग इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको किताबों से भी मिल सकती है तो आप उसे किताबों से लें। उसके साथ साथ सोशल मीडिया का यूज़ होता है लोगों को से कनेक्ट करने के लिए, तो डिजिटली आप कनेक्ट करें, दैट इज़ गुड, बट जितना हो सके कि बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर हमेशा कनेक्टेड ना रहें, क्योंकि उसके मिस होने से बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ मिस हो रहा है, हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो उनको इस तरह का आभास होता है कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, ये हमेशा उनमें रहता है। उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिसमें हम लोग परिवार के साथ उठते बैठते हैं, दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खेलने बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं बाहर, इन चीज़ों पर लोगों का मन नहीं लगता है, और लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू ही ये सब चीज़ करना एक तरह से पसंद करते, एक तरह से उनकी आदत बन जाती है। तो इससे भी हमें बचना होगा। इसके साथ साथ कुछ कुछ ये चीज़ें हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया के फॉल्स प्रोपेगेंडा के कारण लोगों के अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, लोग जुआ खेलने लगे हैं, लोग गेम्स खेलने लगे हैं। इन्हीं बातों के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन्होंने जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको बैन कर दिया है। तो जो दुष्प्रभाव है उसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, और हमें भी अपने तरफ से सचेत रहना होगा इसके लिए।
0: तिली तिली मोबाइल का इस्तेमाल करना, मोबाइल देखा फिर रख दिया, एक मिनट भी नहीं हुआ फिर मोबाइल उठा लिया, फिर देख रहे हैं फिर रख दिया, तो ये क्या है डॉक्टर साहब? तेज़ गति से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर चोट पहुँचा रहा है ये।
1: जी जी, इसी को मैंने जो मैंने फोमो बोला, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ कुछ मिस हो रहा है, वही है ना, हमारी आदत हो गई है कि देखते लगता है अरे कुछ आया तो नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट तो नहीं है, वो क्या कर रहा होगा, अरे उसका स्टेटस चेक करता हूँ, ये क्या उसका स्टेटस चेक करता हूँ। इसी को हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसे लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं, वो चाहता है कि हम राउंड द क्लॉक पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहें, पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही वो मुझे पता हो सोशल लेवल पे। दैट्स वाई मैंने बोला था कि ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का यूज़ हमें एडिक्शन की ओर धकेल रहा है, इसी को एक तरह का ये एडिक्शन ही है ये।
0: जी डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे या युवा साथी मोबाइल पर लगे रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण समय अपना नष्ट करते हैं, माता पिता की कितनी भूमिका हो जाती है, खासकर वैसे अभिभावक, वैसे पेरेंट्स जो बच्चों को मोबाइल पकड़ा कर रील दिखला कर खाना खिलवाते हैं?
1: जी, कहीं ना कहीं ये हम पेरेंट्स का एक थोड़ा सा इजी वे अपनाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, अगर आप बच्चे आप ही से सीखते हैं, पहला टीचर बच्चों का उनके माँ बाप ही होता है। अगर आप मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बच्चे आपको देख के करेंगे ही करेंगे उन्हें, क्योंकि पहला गुरु आप ही हैं, वो देख के सीखते हैं उस उम्र में। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो घर में मोबाइल का यूज़ है, इवन टीवी का यूज़ हम लोग कहते हैं कि बच्चों के सामने ना करें। अगर आप खाते समय, बहुत लोगों की आदत है कि टीवी देख के खाते, दो वो न्यूज़ ही सुन रहे हैं लेकिन वो खाते हुए टीवी देख रहे हैं। बच्चा ये परसीव कर रहा है कि वो टीवी देख रहे हैं, वो ये नहीं परसीव कर रहा कि न्यूज़ देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं। तो वो सीखते हैं कि अरे मैं भी देखूंगा ये करते हुए। तो पहला चीज़ तो होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको इससे दूर रखना है। दूसरा चीज़ है कि पेरेंट्स को थोड़ा मेहनत करना होगा। एनर्जी बहुत होती है ज़्यादा छोटे बच्चों में, तो उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। उसके लिए उन्हें ग्राउंड में ले जाएं या फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करें, अगर आप उसमें इंगेज रखेंगे तो बच्चे उसमें इंगेज होंगे और इस ओर कम आकर्षित होंगे। तो लोग क्या है कि अपनी सहूलियत देखते, सबसे ईजी वे है ये पकड़ा दो, वो
0: जी
1: अपना खा लेंगे, हम तब तक कुछ और कर लेंगे। तो इसके लिए तो वो दिक्कत है। तो आपको वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
0: और यहाँ तक कि बच्चे या युवा साथी कहीं भी आप देख लें, चाहे वो घर हो, चाहे वो रेस्तरां हो या फिर ढाबा पर हो, कहीं भी वो कुछ खा रहे हैं, बगल में उनकी मोबाइल चलती रहती है। न वो मोबाइल का आनंद लेते हैं न खाने का स्वाद। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप, डॉक्टर साहब?
1: उनको मैं यही कहूंगा कि वो अभी प्रेजेंट में अपने आप को रखें, और ठीक है स्टिमुलेशन जरूरी है लेकिन जिस चीज़ के लिए आप आए हैं उस चीज़ को आप एंजॉय करें। आप अगर किसी के साथ खाने के लिए आए हैं तो उस खाने का लुत्फ उठाएं, दोस्तों के साथ खाने पे गए हैं तो बातचीत के साथ खाने का लुत्फ उठाएं, फैमिली के साथ खाने पे गए हैं तो फैमिली के साथ बातचीत करें। ये वो कुछ कुछ क्षण होते हैं हमारी रोज़मर्रा की भागदौड़ की ज़िंदगी में जहाँ आप साथ बैठते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं,
0: और हमें सुकून भी प्रदान
1: सुकून भी
0: करता है।
1: प्रदान करता है।
0: जी, यदि हम डिजिटल कर्फ्यू, जैसा आपने बताया, दिन भर में हम एक डिजिटल कर्फ्यू लगा दें, एक सीमित समय में सोशल मीडिया का हम सहारा लेंगे और कोशिश ये करें कि अपने दोस्तों से मिलें, परिवार के संग साथ बैठकर खाना खाएं, यदि कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ एंजॉय करें, ना कि आप बैठकर मोबाइल देखते रहें।
1: आपने बहुत सही कहा सर, अगर लोग इन इन चीज़ों पे अमल करने लगे तो जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का दुष्प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है।
0: जी, तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, और डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, मनोरोग विशेषज्ञ, आज आप इस कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: तो श्रोताओं, आज की बातचीत से हमें यह संदेश मिलता है कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम सोशल मीडिया का उपयोग करें, सोशल मीडिया का हमारे उपयोग ना करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, स्क्रीन से समय समय पर दूरी बनाएं, परिवार और मित्रों के साथ प्रत्यक्ष संवाद के लिए समय निकालें, और यदि मानसिक परेशानी लगातार बनी रहे तो योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच ना करें। दोस्तों, कार्यक्रम में चर्चा और भेंटवार्ता के माध्यम से जीवन, समाज और परिवार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हम अपनी बातें साझा करते हैं। श्रोताओं, जीवन में प्रेम और अपनापन ऐसे अनमोल उपहार है जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। कभी कभी एक छोटा सा उपहार भी हमारे दिल में ढेर सारी खुशियाँ भर देते हैं और रिश्तों में मिठास घोल देता है। इसी खूबसूरत भावनाओं को समेटे हुए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म तोहफा का एक प्यारा और बेहद लोकप्रिय गीत, जिसके बोल है प्यार का तोहफा तेरा। तो श्रोताओं, आइए आप भी मधुर गीत का आनंद लीजिए।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म तोहफा का यह खूबसूरत गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, और संगीत था बप्पी लहरी का। दोस्तों, आशा है कि यह गीत ने आपके मन में प्रेम, खुशी और अपनेपन की मधुर अनुभूति जगाई होगी। तो मित्रों, फिलहाल इस गीत को यहीं विराम देते हैं और सुनते हैं एक और चर्चा बेहतर आचरण, बेहतर व्यक्तित्व विषय पर। श्रोताओं, कहा जाता है कि व्यक्ति की असली पहचान उसके चेहरे या पहनावे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और आचरण से होती है। हमारी वाणी में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति स्नेह और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता ही हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाती है। अच्छा आचरण न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि परिवार में खुशहाली और समाज में सद्भाव भी बढ़ाता है। वहीं हमारा अहंकार, कटु वचन और दूसरों का अनादर अच्छे संबंधों में दूरियां पैदा कर सकता है। मित्रों, बेहतर आचरण अपनाकर हम अपने व्यक्तित्व को कैसे निखार सकते हैं और अपने परिवार तथा समाज में सम्मान का स्थान कैसे बना सकते हैं, इस चर्चा में हमें यह सीख मिलती है कि अच्छा व्यक्तित्व केवल बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि अपने दैनिक व्यवहार में अच्छे संस्कार अपनाने से बनता है। किसी से

प्रेम पूर्वक बातें करना, गलती होने पर भी उसे स्वीकार करना, दूसरों की सहायता करना और हर व्यक्ति का सम्मान करना हमारे व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाता है। याद रखिए, हमारा अच्छा आचरण ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए आइए हम स्वयं से शुरुआत करें और अपने व्यवहार को इतना सुंदर बनाएं कि हमारे शब्दों से खुशियाँ और हमारे आचरण से दूसरों के जीवन में सकारात्मकता आए। इसी संदेश के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और समय भी हो चला है आप सबों से विदा लेने का। तो दीजिए अनुमति अपने दोस्त युवराज को और फिर से मिलेंगे इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 4:35 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का समय होगा युववाणी कार्यक्रम का। 5:30 बजे श्रमिक लोक। शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। 6:02 पर किसान वाणी। 6:32 का समय होगा हमारी दुनिया कार्यक्रम का। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर लोकगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे हो भाषा में लोकगीत। 7:20 पर क्षेत्रीय समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। 7:45 पर समाचार ध्वनि चित्र। 8:00 का समय होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंधा का। 8:45 से हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। 10:00 हमारे दिल्ली केंद्र से संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म विवाह के इस गीत के साथ। गायक कलाकार हैं श्रेया घोषाल और पैमेला जैन। संगीत रविंद्र जैन का है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: ಸ್ವಯಂ ಇದೆ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार. सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर.

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला पुलिस कर्मियों से कथित बदसलूकी और जेएनयू मामले को लेकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। दूसरी ओर मतदाता सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस ने काला दिवस मनाते हुए भाजपा पर पलटवार किया है। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर 17 सितंबर से चला 24 दिवसीय विशेष यात्री सेवा अभियान आज संपन्न हो गया। विमानपत्तन निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सेवाएं देना था। हाल ही में यहां सस्ते खान पान, बच्चों के लिए किड्स जोन और स्थानीय कला के लिए अवसर आउटलेट शुरू किए गए हैं। सरायकेला खरसावां के चांडल थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया। 7-8 नकाबपोश अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान के मालिक सुरेश चौधरी के परिवार को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी लूट लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोहरदगा सदर अस्पताल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिनव सहाय ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी का इलाज संभव है और मनोचिकित्सक से परामर्श लेना पागलपन नहीं है। अस्पताल में यह परामर्श सेवा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। हजारीबाग उत्पाद विभाग और गया की संयुक्त टीम ने बिहार झारखंड सीमा पर दनवा ग्राम में वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और बियर जब्त की है। आगामी त्योहारों को देखते हुए हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सत्ती के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। सिमडेगा में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग का आज भव्य स्वागत किया गया। उपायुक्त कंचन सिंह ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना करते हुए हर संभव सुविधा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में।

आज के संध्याकालीन सभा को लेकर आप सभी श्रोता दोस्तों के साथ हूँ मैं संगीता। आइए श्रोताओं करते हैं आज के संध्याकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी श्रोताओं को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता को हमने आपके लिए सजाया है भूले बिसरे गीतों से। संध्या के 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। संध्या 6:00 प्रसारित होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार, और संध्या के 6:02 पर आप सुन सकेंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। आपका स्वास्थ्य इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या के 6:30 पर। संध्या के 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 7:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। रात्रि के 8:00 आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। गजलों का कार्यक्रम महफिल इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि के 10:00। 10:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। यहीं से प्रसारित अंग्रेजी समाचारों का प्रसारण होगा रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि के 11:10 पर श्रोताओं, हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:06 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता को हमने आपके लिए सजाया है भूले बिसरे गीतों से। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म साहेब बीबी और गुलाम से, आवाज़ गायक कलाकार आशा भोसले की।

फिल्म साहिब बीबी और गुलाम के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा फिल्म संगम से। आवाजें हैं गायक कलाकार मुकेश और लता मंगेशकर की।

गायक कलाकार मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना फिल्म संगम से। कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार उमा देवी के स्वर में फिल्म दर्द से।

फिल्म मेला से ये गीत आपने सुना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, गायक कलाकार उमा देवी के स्वर में फिल्म दर्द से।

0: गायक कलाकार उमा देवी के स्वर में ये गीत आपने सुना फिल्म दर्द से। इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस

0: विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, गायक कलाकार मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म गंगा जमुना से।
4: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

श्रोताओं, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वरों में गाए हुए फिल्म गंगा जमुना के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम गुलदस्ता में हमने आपको सुनवाए भूले बिसरे गीत। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हैप्पी न्यू ईयर। आप सुन रहे थे इसी फिल्म से ये गीत। आवाज़ें थी गायक कलाकार श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में फिल्म राम लखन से।

फिल्म रामलखन के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। आवाजें हैं गायक कलाकार एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चाईबासा से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला फिल्म संगीत, फिल्म तेजाब से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार अलका याग्निक और साथियों की। इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

गायक कलाकार अलका याग्निक और साथियों के स्वरों में गाए हुए फिल्म तेजाब के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी रांची।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची सदर अस्पताल में 8 नमोजीवन रक्षक बाइक एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह एम्बुलेंस मरीजों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में मदद करेगी। फिलहाल रांची सदर अस्पताल को 7 और नागरमल मोदी सेवा सदन को 1 बाइक दी गई है। झारखंड सीआईडी ने राज्य से लापता 8 लोगों की देशव्यापी तलाश के लिए हु एंड क्राई नोटिस जारी की है। सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक द्वारा जारी इस आदेश के तहत लापता लोगों की तस्वीरें और विवरण दूसरे राज्यों की पुलिस को भेजे गए हैं। इनमें पाकुड़ के 6 दिन का नवजात बच्चा और वर्ष 2022 से 26 के बीच गायब हुए लोग शामिल हैं। रांची में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला पुलिसकर्मियों से कथित बदसलूकी और जेएनयू मामले को लेकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सरायकेला खरसावां के चांडल थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया। 7-8 नकाबपोश अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान के मालिक सुरेश चौधरी के परिवार को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी लूट लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुमला जिला में जल जीवन मिशन के तहत विलम्ब से चल रही पेयजलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के पदाधिकारी, अभियंता और संवेदक शामिल हुए। उप विकास आयुक्त ने दिसंबर 2026 तक सभी लंबित योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आज का अगला कार्यक्रम, बांग्ला कार्यक्रम सात रंग।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी, आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें ऋण पास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800345 4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।

0: कार्यक्रम आपका स्वागत सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमेश दास का नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ बातें करते हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर। जी हाँ, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम और NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम है। NBBDCP मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों को नियंत्रित करता है और यह NHM के तहत एक प्रमुख योजना है जो पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिससे वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार जिसे हम काला ज्वार भी कहते हैं, जेई और हाथीपांव जैसे वेक्टर जनित रोगों, मच्छरों और अन्य कीड़ों से फैलने वाले रोग की रोकथाम और नियंत्रण करना है। श्रोताओं, अब आइए कुछ और हम जानकारी लें, लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद श्रोताओं, आइए अब कुछ और हम जानकारी लेते हैं डेंगू एवं चिकनगुनिया कारण व उपचार। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कुजूर और उनसे बातचीत कर रहे हैं अवनीश सिन्हा।
3: बहुत तेज बुखार जो शरीर में उत्पन्न होता है, जिसमें शरीर में अत्यधिक दर्द होती है और विशेषकर सिर में बहुत तेज दर्द होता है। एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी होती है और इसको देखा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में महामारी के रूप में पाया जाता है। जैसा कि डेंगू जो है एक वायरस है, जिसको हम लोग विषाणु भी कहते हैं, ये डेंगू वायरस के द्वारा होता है, जो चार प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। एक्चुअली इसमें मरीजों को बहुत तेज बुखार और सिर दर्द के साथ ही साथ हड्डी में बहुत तेज दर्द होता है, इसलिए इसको आम भाषा में लोग इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इससे शरीर और जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। ये मूलतः

0: मच्छर के काटने से फैलता है।
1: अच्छा, ये मच्छर के द्वारा ही फैलता है?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मच्छर के काटने से फैलता है। और ये जो मच्छर होते हैं ये एडीज मच्छर होते हैं।
1: ये यानी कि साधारण मच्छर है या जो मच्छर हम लोगों को काटते हैं वैसे ही मच्छर है?
0: ऐसे वैसे ही मच्छर है, साधारण है, लेकिन ये जो मलेरिया का मच्छर है और एडीज का, ये दोनों भिन्न है, अलग अलग है। इसका मच्छर में देखिएगा कि इसके शरीर में सफ़ेद और काला, सफ़ेद और काला दाग रहता है बीच बीच में, एक तरह से इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। और ये दिन में काटता है, जैसे मलेरिया वाले मच्छर आपको रात में या सुबह में काटता है, वो रात दिन में नहीं काटता है। लेकिन एडीज मच्छर जो है वो मूलतः प्रायतः दिन में ही काटता है।
1: और ये डॉक्टर साहब ये पनपता कहाँ पे?
0: ये तो पानी में ही पनपता है, साफ पानी में पनपता है। और विशेषकर ये मच्छर वहाँ पनपता है जो हम लोग के घर में हम लोग जो रखते हैं, जैसे कूलर है, फ्लावर पॉट है जहाँ हम लोग गुलदस्ता वगैरह रखते हैं, या अगल बगल जो हम लोग घर में पानी को स्टोर करते हैं और यूज़ करने के लिए और बिना ढके रहते हैं, तो वैसे जगहों पर ये मच्छर जो है वहाँ पे अंडे देते हैं और अपने प्रजनन का काम करते हैं, और वहीं से ये मच्छर उत्पन्न होती है। अगर ये किसी व्यक्ति को अगर डेंगू है, अगर उसके शरीर में उसके रक्त में डेंगू का विषाणु है, वायरस है, वैसे व्यक्ति को अगर ये एडीज मच्छर काटते हैं और उसका रक्त लेते हैं तो वो वायरस जो है वो उस मच्छर में आ जाता है और वो मच्छर जो है वो संक्रमित हो जाता है। और मच्छर संक्रमित हो जाता है तो वो जब स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसको वो वायरस जो है वो उसको उस स्वस्थ व्यक्ति को दे देता है, जिससे वो पीड़ित हो जाता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति इन्हीं एडीज मच्छर के द्वारा, संक्रमित मच्छर के द्वारा फैलता है।
1: यानी कि अगर कोई व्यक्ति डेंगू मच्छर से संक्रमित है और उससे उस व्यक्ति को कोई मच्छर काट करके दूसरे व्यक्ति को अगर काटता है तो इस तरह से वो दूसरे में भी
0: फैल जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि मच्छर एडीज वायरस से संक्रमित होना चाहिए। अगर वो संक्रमित नहीं है और काटता है तो डेंगू नहीं होता है।
1: डॉक्टर साहब, इसमें इसका संक्रमण काल क्या होता है?
0: संक्रमण काल ऐसा है कि जैसे कि जैसे जो मच्छर कि संक्रमित मच्छर जो वायरस कैरी किया हुआ है, जिस जो मच्छर संक्रमित है डेंगू वायरस से, वो जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके आज काटा तो उसके 3 से 5 दिन के बाद ऐसे व्यक्ति में डेंगू बुखार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह संक्रमण काल जो है वो लगभग 3 से 10 दिनों का रहता है, हो सकता है।
1: तो इसमें क्या बुखार रुक रुक कर आता है या कंटिन्यू रहता है?
0: इसमें जैसा कि डेंगू बुखार के लक्षण जो हमने बताया कि बहुत तेज़ बुखार, सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द, तो इसमें 3 तरह का डेंगू बुखार के लक्षण होते हैं। एक तो साधारण डेंगू बुखार होता है और एक होता है जिसमें हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं अंग्रेजी में।
1: इसमें
0: डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होता है कि आदमी को मसूड़ा में खून आना, उसको अगर उसको हाई फीवर हो गया और उल्टी हो रहा है तो उसमें भी खून आना, शरीर में चकते चकते दाने निकल आना, है ना, इस तरीके से उसको एक तरह से कहा जा सकता है कि उसमें रैश जो उत्पन्न हुआ है। और जब हम लोग उसको जांच करते हैं, टॉर्निकेट टेस्ट बोलते हैं, अगर हम लोग यहाँ इसको कहीं पर भी अगर हम टॉर्निकेट को बांधते हैं और फिर देखते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उस स्किन के नीचे उनको हेमरेज हुआ है, हेमरेज हो रहा है, पेटिचियल हेमरेज भी बोलते हैं उसको। तो ये थोड़ा गंभीर हो जाता है, है ना, इसीलिए इसको हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर एक तरह से साधारण डेंगू के बाद अगर उसका प्रॉपर तरीके से इलाज ना हो और वो उसकी बीमारी गंभीरता बढ़ती चले जाती है तो उस परिस्थिति

0: स्थिति में डेंगू बुखार से वो डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब यही बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, हेमरेजिक जो अभी हम लोग हमने बताया कि मसूड़ों में खून आना और पेटिचल हेमरेज होना स्किन के नीचे भी और खून में उल्टी में खून आना, तो ये सब लक्षण के बाद जब आदमी दूसरे स्टेज में पहुंच जाता है, इसी बीमारी में हम लोग बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, है ना, डेंगू हेमरेजिक फीवर के बाद डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इंटरनल जो शरीर के आंतरिक जो है वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, है ना, उसमें रक्तस्राव होने लगता है और आदमी धीरे धीरे उसका पल्स बीपी सब कम होने लगता है, बेहोशी की ओर चला जाता है और आदमी बेड रिडन हो जाता है, तो वो खतरनाक हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में ऐसे रोगियों को अगर पता चल रहा है जिसको कि चखते चखते निकल गए, मुंह से उल्टी होना या उनका बीपी कम होना, उनका चेतना कम हो जाना, होश मतलब बेहोश हो जाना, तो वैसी परिस्थिति में इनको तुरंत तत्काल के नज़दीक के कोई भी हॉस्पिटल बड़े अस्पताल में ले जाकर इनका इलाज कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो ग्रामीण बहुल क्षेत्र है और बहुत ही हम ये कहें कि पिछड़ा क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में अगर हम यूँ कहें कि लोग बहुत अनभिज्ञ हैं इस सब के बारे में, तो उन अगर किसी भी प्रकार की बुखार अगर होता है उन्हें, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, जैसा कि हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिला मलेरिया जोखिम क्षेत्र में आता है, तो कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, तो यहाँ पे तो सर्वप्रथम हम लोग हर बुखार को मलेरिया का जांच करते हैं, लेकिन मलेरिया अगर उसको नहीं निकलता है और बुखार उसको कंटिन्यू रहता है और अभी जो लक्षण हमने बताया कि जोड़ों में दर्द, आँख के नीचे में आँख के अंदर में दर्द होना, तेज बुखार आना, सिर में बहुत तेज दर्द होना या फिर नाक से ब्लीडिंग होना और मसूड़े में खून आना, ये सब डेंगू के लक्षण नज़र आने लगते हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोग इनको विशेष करके एक तो बड़े अस्पतालों में डॉक्टर के चिकित्सा ई पे रखना पड़ता है, तो इसका हम लोग को जांच कराना पड़ता है, तो इसका जांच बड़े अस्पतालों में हो सकता है, लेकिन ऐसे मरीजों को तो बेहतर होता है कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता क्योंकि डेंगू वायरस का है, तो इसमें यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि इनको प्लाज्मा प्लेटलेट्स इनका कम हो जाता है।
1: अच्छा, इसमें प्लेटलेट्स
0: कम हो जाता है, तो इस कारण से इनको हम लोग भर्ती करते हैं अस्पताल में और इसमें प्लेटलेट्स वगैरह इनको चढ़ाते हैं, है ना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाते हैं जिससे कि इसका प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाए। ये नॉर्मली हम लोग 2.5 लाख के आसपास देखते हैं, लेकिन ये घटकर 50 से भी नीचे आ जाता है, 50,000 के नीचे आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में पेशेंट बहुत गंभीर हालत में चला जाता है, तो उसमें उसको मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको भर्ती करके हम लोग उनको एक जनरल ट्रीटमेंट के और एक फ्लूइड रिहाइड्रेट करके और विशेष करके प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ा करके पेशेंट को जनरल कंडीशन को उनको स्टेबल करते हैं ताकि मरीज की जान बच सके।
1: तो इसका जनरल उपचार यही है?
0: हाँ, वो अगर इस परिस्थिति में मरीज आ जाती है तब, लेकिन अगर हम लोग शुरुआती लक्षण में ही अगर देख लें और उनका ट्रीटमेंट कर लें, तो ट्रीटमेंट तो स्पेसिफिक नहीं है, बस जनरल कंडीशन को मैनेज करना है, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन ये डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम और डेंगू शॉक सिंड्रोम में जब मरीज आ जाता है तब इनका इलाज भर्ती करके किया जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, डेंगू की तरह ही चिकनगुनिया भी हमारे क्षेत्रों में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके चिकनगुनिया क्या है?
0: हाँ, चिकनगुनिया भी जैसे हमने बताया कि डेंगू में एडीस मच्छर के काटने से होता है
1: जी,
0: उसी तरह चिकनगुनिया भी एडीस मच्छर के काटने से ही होता है, और ये भी एक वायरल बुखार है
1: जी,
0: है ना, जिसमें मरीज को जोड़ों में दर्द होता है
1: जी,
0: है ना, ठीक उसी तरह हमला करता है इसमें जिस प्रकार डेंगू के वायरस भी मरीज को शरीर में अपना असर छोड़ते हैं, है ना, तो लेकिन डेंगू में आदमी डेंगू साधारण

0: तो इसी के साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आप सुन रहे थे जरूरी संदेश, आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी रांची।
2: न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे रे, अरे कहाँ चल दिए?
3: NSV कराने।
2: पुरुष नसबंदी यानी NSV की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देवघर में सैन्य संपर्क मेले और एम्स के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। चिकित्सा क्षेत्र में सेवा और समर्पण का किया आह्वान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में 8 अत्याधुनिक नमो जीवन रक्षक बाइक एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। मरीजों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में मिलेगी मदद। सीआईडी ने राज्य से लापता 8 लोगों की देशव्यापी तलाश के लिए जारी किया हु एंड ट्राई नोटिस। दूसरे राज्यों को भेजे गए तस्वीरें और विवरण। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कल से 13 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश, वज्रपात और आंधी की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और सिमडेगा में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। कप्तान सलीमा टेटे ने राज्य में हॉकी के बेहतर भविष्य की जताई उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज देवघर में सैन्य संपर्क मेले और एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के परिवारों के कल्याण के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता जताई। एम्स के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति ने मेडिकल छात्रों को डिग्रियां सौंपी और उनसे चिकित्सा क्षेत्र में सेवा, समर्पण और मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची सदर अस्पताल में 8 नमो जीवन रक्षक बाइक एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह एम्बुलेंस मरीजों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में मदद करेगी। फिलहाल रांची सदर अस्पताल को 7 और नागरमल मोदी सेवा सदन को 1 बाइक दी गई। श्री सेठ ने कहा कि उनका प्रयास है कि जल्द ही हर एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सुविधा मुहैया करा दी जाए।
1: सेवा संकल्प अभियान के तहत आज ये नमो जीवन रक्षक बाइक और आज हमारी रक्षा शक्ति देश की जिसमें डीआरडीओ का बहुत बड़ा से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, उसी का पार्ट है ये नमो जीवन रक्षक बाइक। तो फर्स्ट फेज में सदर अस्पताल को 7 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं सेवा संकल्प।
0: महिला पुलिसकर्मियों से। रांची में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला पुलिसकर्मियों से कथित बदसलूकी और जेएनयू मामले को लेकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
2: कहे या न कहे, सुरक्षा देना, जन माल की हानि न हो, ये देखना पुलिस का दायित्व बनता है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, करना भी चाहिए, अपनी मांगे माननी भी चाहिए, लेकिन उसका तरीका है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हो रहा है।
0: दूसरी ओर मतदाता सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस ने काला दिवस मनाते हुए भाजपा पर पलटवार किया। मौके पर पार्टी नेता रमा खलखो ने आरोप लगाया कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ये हथकंडे अपना रही है।
3: भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो हैं, ये जो वोट चोर गद्दी छोड़कर जो पूरे देश में आज लोग निकल चुके हैं, आज आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर को आज जो तानाशाह की सरकार है पूरे तरह से बंद कर दी है, लेकिन आवाज को आप बंद नहीं कर सकते हैं। और ये ध्यान भटकाने वाली काम है कि आज हमने जो कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो, क्योंकि वो जो किस प्रकार से वोट की चोरी एसआर के माध्यम से हो रहा है उसको ये दिग्भ्रमित करने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर ये कर रहे हैं।
0: झारखंड सीआईडी ने राज्य से लापता 8 लोगों की देशव्यापी तलाश के लिए हु एंड क्राई नोटिस जारी किया है। सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक द्वारा जारी इस आदेश के तहत लापता लोगों की तस्वीरें और विवरण दूसरे राज्यों की पुलिस को भेजे गए हैं। इनमें पाकुड़ का 6 दिन का नवजात बच्चा और 2000 रामगढ़ के नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिवंगत माता रूपी सोरेन को कई गणमान्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व भूपेश बघेल, मंत्री योगेंद्र प्रसाद और सांसद पप्पू यादव समेत कई सांसदों, विधायकों और आईएएस अधिकारियों ने श्री सोरेन के पैतृक आवास पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए यह प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज की इस विशेष श्रृंखला का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से यह मानना रहा है कि स्थानीय संस्कृतियों का सम्मान ही देश की असली ताकत है।
4: भारत की एकता अखंडता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। बिना एकता हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी सशक्त नहीं कर पाएंगे।
0: प्रधानमंत्री के इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आत्मसात करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के लोग अलग अलग विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं चाईबासा से स्थानीय लोगों के अनुभव।
5: झारखंड में सरोल प्रकृति और नई शुरुआत का पर्व है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश बिल्कुल साफ है कि हम अपनी संस्कृति को बचाते हुए दूसरी संस्कृतियों से भी बहुत कुछ सीखें।
6: एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में पश्चिमी सिंहभूम की संस्कृति में सामूहिकता का बहुत महत्व है। अगर हम इस अपनी लोक कला, भाषा और परंपराओं को देश के दूसरे हिस्सों की संस्कृति से जोड़े तो हमारी स्थानीय पहचान भी मजबूत होगी और राष्ट्रीय एकता भी।
0: रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर 17 सितंबर से चला 24 दिवसीय विशेष यात्री सेवा अभियान आज संपन्न हो गया। विमानपतन निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सेवाएं देना था।
7: 24 दिनों का यह अभियान शुरू हुआ था 17 सितंबर से और आज उसका आखिरी पड़ाव है 10 अक्टूबर। इस 24 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम को निर्धारित किए गए थे और उस हर एक दिन के जो कि हमारे अतिथि कह लीजिए, उनको ध्यान में रखकर उनकी यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए इस 24 दिनों का कार्यक्रम रखा गया था।
0: सरायकेला खरसावां के चांडिल थाना क्षेत्र में हथियार बंद बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया। 7-8 नकाबपोश अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान के मालिक सुरेश चौधरी के परिवार को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी लूट लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कल से 13 अक्टूबर तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम की संभावित स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सिमडेगा में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन का आज भव्य स्वागत किया गया। कप्तान सलीमा टेटे ने जीत के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए राज्य में हॉकी के

0: और भविष्य की उम्मीद जताई।
1: हर एक प्लेयर को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करते हैं बट हमें और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, और ये है कि हमें रूप से ही हमें कोचेस का सब कुछ का हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टर भी बन गया तो अभी हमारे प्लेयर को बस अपना जुनून दिखाना है, हमें और ट्रॉफी खेलना है, और हमें देखकर और सीख भी रहे होंगे कि अभी हम उनके लिए मेडल ले गए।
0: मौके पर उपायुक्त कंचन सिंह ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना करते हुए हर संभव सुविधा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देवघर में सैन्य संपर्क मेले और एम्स के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। चिकित्सा क्षेत्र में सेवा और समर्पण का किया आह्वान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में 8 अत्याधुनिक नमो जीवन रक्षक बाइक एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। मरीजों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में मिलेगी मदद। सीआईडी ने राज्य से लापता 8 लोगों की देशव्यापी तलाश के लिए जारी किया हु एंड क्राई नोटिस। दूसरे राज्यों को भेजे गए तस्वीरें और विवरण। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कल से 13 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश, वज्रपात और आंधी की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और सिमडेगा में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। कप्तान सलीमा टेटे ने राज्य में हॉकी के बेहतर भविष्य की जताई उम्मीद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: करना अच्छा होगा।
1: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
0: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
1: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
0: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
1: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र भी कच्ची है।
1: जी हाँ, कानून भी यही कहता है। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
0: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
1: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
0: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
1: और लड़के की 21 वर्ष है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा से राष्ट्र सेवा तक के सफर की गिरिडीह में प्रशंसा की जा रही है। बनियाडीह कोलियरी के श्रमिक नेता प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि मोदी सरकार में मजदूरों को अनेक लाभ मिले हैं।
2: जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से कोल इंडिया के मजदूरों के लिए काफी फायदा हुआ है। सर्वप्रथम पहले जो इंश्योरेंस था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, वो 40 लाख के करीब था, अब उसे बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया है। दूसरी बात है कि जो बच्चे 12 में 80-90% मार्क्स लाते हैं उस बच्चे के लिए कोचिंग की व्यवस्था, एवं अगर वो बच्चे IIT निकालते हैं, मेडिकल निकालते हैं, तो कोल इंडिया की ओर से ऐसे व्यवस्था की गई है कि उसकी सारी फीस सरकार देगी।
1: UPI में हुए बदलाव का गिरिडीह के व्यापारियों ने स्वागत किया है। व्यापारी संदीप डंगेज का कहना है कि UPI से छोटे व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं है।
3: सरकार ने ट्रांजेक्शन के लिए कुछ जो शुल्क लगाया है वो आम आदमी

0: से कोई प्रभावित नहीं होगा, छोटे ट्रांजेक्शन पर नहीं लग रहा है और लगभग 2000 के बाद ट्रांजेक्शन में, वो भी मर्चेंट के लिए। और इसकी भी जो दर है विश्व में और भी जो देश है उसकी तुलना में बहुत कम है, और देश हित में ये फैसला जरूरी था, इसलिए सरकार ने फैसला लिया और आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये मर्चेंट के लिए है और ये 2000 से ज्यादा का है, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के जिंदगी में व्यापक बदलाव हुआ है, महिलाएं आवास पाकर बेहद खुश हैं और मोदी सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रही हैं।
2: सरकार दल के कादे बने लेंगे तो बढ़िया से रहेंगे, सरकार के धन्यवाद देंगे कि कहाँ जहाँ हाले तहाँ तैयार कर देंगे।
3: हमको नाम है छकनी देवी, ये पहले माटी घर सरकार दिया ढड़ा घर, तब पंखा हो गया, बढ़िया से रहते हैं, सरकार धन्यवाद है।
1: गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भले ही शुरू नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दिवंगत मंत्री सुदीव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा ने पीरटाड़ प्रखंड में शहीद बेदी पर माल्यार्पण कर राजनीति में अपने पैर बढ़ा दिए हैं। इधर भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहवादी, सुरेश साव, चुन्नू कांत, इंजीनियर विनय सिंह एवं विनोद सिन्हा ने टिकट की आस में क्षेत्र दौरा शुरू कर दिया है। इस बीच राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गिरिडीह में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से कहा है कि चुनाव एसआईआर प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही कराई जाएगी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
4: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:18 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम आपकी पसंद का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, महालया के इस पावन अवसर पर महिषासुर मर्दिनी और मां दुर्गा के आगमन की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जगा दे चेतना, भर दे प्राणों में नया उल्लास। पितृपक्ष की विदाई के साथ आ गया महालया का नया प्रकाश। श्रोताओं, आकाशवाणी चायबासा से प्रसारित इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज वो पवित्र दिन है जिसकी गूंज मात्र से कण कण में एक अदृश्य ऊर्जा का संचार हो जाता है, क्योंकि श्रोताओं, आज है महालया। ये वो पावन बेला है जो हमें यह याद दिलाती है कि माँ अब धरती पर आ रही है। रेडियो की पन्नों पर गूंजा वही चीर परिचित स्वर वीरेंद्र कृष्ण भद्र जी की भारी और सम्मोहक आवाज में महिषासुर मर्दिनी या देवी सर्वभूतेषु का यह पाठ हर बंगाली ही नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में एक अनकही सिरहन पैदा कर देता है। अंधकार पर प्रकाश की और असत्य पर सत्य की विजय का यह प्रतीक पर्व हमारे जीवन से हर प्रकार के अवसाद को मिटा दे। पितृ पक्ष के तर्पण के साथ हमने अपने पूर्वजों को नमन किया और अब महालया के इस शंखनाद के साथ ही हम देवी दुर्गा के स्वागत के लिए 6 दिनों के लंबे उत्सव दुर्गा पूजा के लिए उल्टी गिरती शुरू कर चुके हैं। कैक्टस के फूलों की महक, कासबन की सफेदी और आसमान में तैरते रुई जैसे बादल, यह सब बयां कर रहे हैं कि माँ आ चुकी है। तो आइए इस महालया के अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने भीतर की हर बुराई, हर अहंकार रूपी महिषासुर का संहार करेंगे। आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता का वास हो, यही हमारी कामना है। तो श्रोताओं, आइए अब करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से। और हमें खत लिखा है अनिल कुमार, अंजु लता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश हमें भेजी है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने। वसुंधरा कॉलोनी सेंट टोला चायबासा के भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल मधुर, प्रशांत मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कोटवा नारायणपुर पूर्व बाबा पट्टी बलिया से हमें अपनी फरमाइश भेजी है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबिहार निवादा गाजीपुर के प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। शेरपुर कलाम गाजीपुर से हमें खत लिखा है अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने। गांव दलाई किला से लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरिजन, गीता सोए, सरिता सोए, सारिका सोए, हारिका सोए, तनुजा सोए, विमी सोए, मनीषा सोए, शीतल सोए और सिनेमाए सोए ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। किशनगंज बिहार से खत लिखा है रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु ने। भिलाई छत्तीसगढ़ के मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। लालमाता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के हर्षिता रामेश्वर कान्हा, सफल
श्रोता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर भाई और प्रभुलाल बागड़ी की फरमाइश भी हमें मिली है। अलिखा डबावली से हमें अपनी फरमाइश भेजी है बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नावागढ़ कटई के नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडावा ग्राम लोहारी से अपनी फरमाइश हम तक भेजी राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने। खुर्दी रोड मानपुर के विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने भी हमें खत लिखा है। गांव केरो से अपनी फरमाइश हम तक भेजी कुर्दूषण लाल चलोत्रा, सुनीता, सम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द ने। बड़वील ओडिशा के सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीतप्रीत ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। हमारे इन सभी श्रोताओं ने लिखा है कि प्रस्तुतकर्ता अपनी पसंद का कोई गीत हमें सुना दे, तो आइए कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत सुनते हैं मेरी पसंद पर फिल्म आशा से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी, चंचल, नरेंद्र चंचल और साथियों की। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मेंदुरंग चनप इला संदेश को बो आयुम लिया।
1: जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
3: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
4: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
2: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
5: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
2: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
6: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी, जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
2: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
7: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
2: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
8: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
2: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
0: नन विशेष संदेश को चनप इलामियत बेपेटा जपागर्बो आयुम लिया विषय दो बहुतना किली मिली आ उतुकोरिया चास विषय रे हिंदी है अमते मने विभिन्न साग सब्जियों की खेती जपागर रे मिना किन्हें डोबरो आल्डा उन्डो आलिंगे बेपटा जपागर रे मिना आलिंगे डोबरो बुड़ी उली। आकाशवाणी चायबासा कार्यक्रम किसान बानी परिवार पायते तिसिंग आलिंग गुमड़ा पीड़ रे मिना अतिया हरला बुरुहातो रेलिंग सेटर बेटा कना मेंडो चास आ गया लो जगर जपागर लगे चास आ गया किंग मर जोहार
9: जोहार जोहार
0: चास आ गया किंग तिसिंग दाबेन लो गे जपागर लगे लिंग हुजु बेटा कना एंड दो विषय ओडों रे जपागर आयार ते चास आ गया किंग आबेन आ उनुरुम सपा सपा जगर ताबेन
9: आले जे नुतम डोबरो अल्डा आतो बोरो आतो पोस्ट ऑफिस बारकुंडी जिले पश्चिमी सिंहभूम झारखंड।
0: ऐसो रास्ता रे काजे डोबरो अल्डा ते किंग आलियो डोबरो बुढ़ोली एंड दो साकिंग साकिंग

0: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
1: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
1: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही है, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
4: निन संदेश को चनब तुंडुरे इलामियत 47 सिविल दुरंग आयुम लिया ज्ञान टू डो ऑंडो जुड़ी को पाए थे।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। वक्त है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं श्रोताओं आप? आशा नहीं बल्कि पूरी पूरी उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। तो श्रोताओं, आइए अब आपको आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है ग्राम बठेना पाटन से बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली और शिवम ने। चटादा सारा गांव से सुजान, सुहत्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। जरूर वरुण महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश हम तक भेजी बाबा साहेब बाड़ोते, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज ने। चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधिरा इंगले और समस्त इंगले परिवार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हिरण छप्पर यमुनानगर हरियाणा से हमें खत लिखा है जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और अर्जुन धीमान ने। तुरीटोला चायबासा के मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अर्पिता कुमारी, सुमित ठाकुर, लाडो और भोला रजक ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। लच्छनपुर से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं जीवन लाल रजक, सरोजनी रजक, रामजी साहू, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और भटगांव बलौदा बाजार से राम दुलार साहू और नीलिमा साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म हीर रांझा का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। इस गीत के बोल लिखे हैं कैफ़ी आज़मी ने और धुन है मदन मोहन की। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं तालुका बुरहानपुर, ग्राम मोहद, मध्य प्रदेश के भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परोब मुबारक बारीकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारीकर। मुकाम पोस्ट भोकरी, महाराष्ट्र के अरशद तड़वी, आरिस अरसलान और यूनुस तड़वी ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से हमें खत लिखा है मुशर्रफ खा तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सभी लोगों ने। बिलासपुर देवरी खुर्द के संतोष तलरेजा, आरती अर्चना, सोनू तलरेजा, कुंवर सिंह, गुड्डू भाई और रामदास की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। न्यू कॉलोनी टुंगड़ी चायबासा से हमें अपनी फरमाइश भेजी सुशील कुमार सिंह, संध्या देवी, प्रियंका, काजल और कृष और किट्टू ने। लुधियाना पंजाब के अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिवा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद के वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर और परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर के वद्रुवली अंसारी, फर्जीवली अंसारी और फर्जीवली अंसारी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। पुरानी भिलाई तीन चरौदा छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश हम तक भेजी नौसाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी, जिसान अहमद सिद्दीकी, सहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी लोगों ने। महाराष्ट्र हिंगोली से मिला है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत और हमें खत लिखा है साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे ने। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल के गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनविंदर पांधा, मनवीत गोलुकाको और जी एस रामगढ़िया की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम अमलेश्वर के डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारण ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत, खास खास और खास हमारे सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म हीर रांझा से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

फिल्म हीर राँझा के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत, फिल्म धरती कहे पुकार के से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार मुकेश और लता मंगेशकर की, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरी की फरमाइश भी हमें फिल्म धरती कहे पुकार के इस गीत के लिए प्राप्त हुई। इसी गीत को सुनना चाहा मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा आनिया अनाया, नेहा सागर गुंबर, हिमांशु गुगलानी, इम्बो कुरैसी और सुधीर नूतन ने। ग्राम जामठी वरुड़ अमरावती महाराष्ट्र के मुकेश दिनकर कासलेकर और विमल विशाखा कासलेकर की फरमाइश भी इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं ग्राम उघड़िया बड़ा बाम्बू से नायडू महतो, उषा महतो, प्रियो महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, राहुल बोदरा, अर्जुन बोदरा और रवि बोदरा। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय, रोशनी, पूजा, तुषार, प्रभा देवी तामोरिया की फरमाइश भी हमें इसी के लिए मिली। बंसाई चायबासा से अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए भेजी। परमेश्वर कुमार, दयावंती देवी, नीलम कुमारी, रचना अमृता कुमारी, पंखुड़ी कुमारी, मीना कुमारी, शिवा खंडायत, शिवम खंडायत और सोनाली खंडायत ने। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है खेड़िया घर प्रखंड मंझारी से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता है बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झेंपी कुमारी, जयमिनी और जयंती ने। बड़का काना से अफजालता, साहिल सुल्ताना और मुंबई से महेंद्र मोदी और राजा बाबू ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। इसी गीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरेंगी के द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। छत्रपति संभाजी नगर से हमें खत लिखा है राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती सीतल राजेश ने। कोटड़ा बहादुर जिला मंदसौर के नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पू लाल और वीके डांगी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। सिंधर पार्क विरमगाम गुजरात के अजित प्रेमिला, भावे सनी भावसार, हेतल कृष्णा और जयमिन भावसार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बेरेडी से हमें खत लिखने वाले श्रोता है हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार और तनु कर्मकार। मझगांव के अहमद हुसैन, शाह हुसैन, मजहर हुसैन, रहमत अली, अब्दुल्ला, आजम भाई, बिरंची गोप और सबा अहमद ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब के विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, रमापुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी और आर एसपुरी ने भी अपनी फरमाइश हमें फिल्म धरती कहे पुकार के इसी गीत के लिए भेजी। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए ये आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

इस गीत के बाद श्रोताओं आइए लेते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है टावर चौक गुमला से, और हमें खत लिखा है एसएम जावेद, सगुफ्ता अंजुम और जेनिस जहरी ने। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है फाजिलका पंजाब से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवानसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार के सभी लोग। गांव हनीरा से मानताराम सिंह कुंटिया की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। वोटसरा नैला के प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। ग्रामी चाहतु से अपनी फरमाइश हम तक भेजी गोलाराम लोवादा, लूदरी, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनी, बिंजाना और लोवादा परिवार के सभी लोगों ने। लोसोदिकी से अपनी फरमाइश हमें भेजी कोमल महतो, पेमी, गोविंद और जीतू साइमन ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कालका से हमें खत लिखा है सुखचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म राजा और रंक से। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं आमला टोला चायबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। ग्राम सौंगा मंगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ के फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। इसी गीत को सुनना चाहा सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र

नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार ने कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है सरायकिला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरामणि मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हेमांती मुंडरी, डोबरू मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरू मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिदी बोस, सोना बाबू और FM शिवा मुंडरी ने। कनेरा मोहल्ला से पत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने भी अपनी फरमाइश हमें से गीत के लिए भेजी है। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिधि गुप्ता, एसबाग पीली कॉलोनी लखनऊ के मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुड़ी गुप्ता की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है राजनगर गांधी चौक से कांति निकेतन से। और हमें खत लिखा है मंजीत, सोनाली, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन ने। पुणे से खत लिखने वाले श्रोता है पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे ने। बड़ा बाम्बो गांव सुपाही साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा कुमारी, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेंद्र जी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। गेलिया लोहार से कोमल बेसरा, बसंती, अनी, अनु बनवाली, सिद्ध कुमारी और पूजा ने भी फिल्म राजा और रंग के इसी गीत को सुनना चाहा। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म राजा और रंग से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है जमशेदपुर स्टेशन रोड से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया। डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ के रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। चांडिल ग्राम हारूडी के तुलसीदास महतो, कल्पना, मनोरमा, दीनबंधु महतो और मनमोहनी महतो की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, और हमें खत लिखने वाले श्रोता है यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम और इरफान मीना। अनारकुली बाजार जगराओं के सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और जयपाल यादव की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म हमसाया का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार आशा भोसले ने। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला के रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत और गुरशब्द। गांधी चौक रोपड़ पंजाब के हरदेव बीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मेका बिरक ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। इसी गीत को सुनना चाहा पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क साजापुर के मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि दीक्षित, शशिकांत, रिया रीत, स्वीटी सागर।

भेजी है। महुलडिया सोनवा झारखंड के नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अनु, तनु, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है गांव चांदपुर पोटका से और हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, आयुष भगत, राजू और बसंत कुमार भगत। कॉलेज रूट घाटशिला के सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी और संतोष आनंद भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। मुसाबनी से इसी गीत को सुनना चाहा कमल भगत, रूपाली भगत, सनी, सोनू और अर्णव राज ने। सनेन क्लब मोहाली से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत्म में मिला है मछली गोदाम कैंदी मुड़ा रायगढ़ से और अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह और ऋषभ सिंह। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म हमसाया से।

श्रोताओं, यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत हमारे जरिए इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें खत अवश्य लिख भेजें। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम रजनीगंधा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चायबासा। चायबासा का पिन कोड नंबर है श्रोताओं 833201। खत में आप अपने पसंद के गीत के साथ ही साथ श्रोताओं अपना पूरा नाम और पता हमें अवश्य ही साफ सुंदर अक्षरों में लिख भेजें। तो श्रोताओं, देर किस बात की, उठाइए पेन और लिखिए हमें खत और भेजिए अपनी फरमाइश हम तक और सुनिए आपके पसंद के गीत हमारे साथ इस कार्यक्रम में। और हाँ श्रोताओं, अपने पसंद के गीत के साथ ही साथ आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है और इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत या सुझाव आपके पास हो तो वो भी आप हमें ज़रूर लिख भेजें। और इस के बाद श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है ग्राम पोंडा काटा से। और हमें खत लिखा है नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती सुरेन, सुहानी देवी, संजय सुरेन, पातुर बांकिरा, डोली बांकिरा और रघुनाथ चरहट ने। दादरीगेट भिफानी के कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। चौहल्दा बागपत के संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। इचलकरण जी महाराष्ट्र से, बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत में मिला है कुचाई बिद्री से और हमें खत लिखा है केपी सोए, सरिता, दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना सोए और सनी सोए ने। ग्राम सूराबेड़ा से भा सिंह सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश, अंशु और बीरू सरदार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। अलगीडाट कोरबा छत्तीसगढ़ के जोहित यादव, विपिन यादव, आयुष यादव, श्रीमती फुलजी यादव और यादव परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें मिली है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म ये वादा रहा से। इस गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने और धुन है राहुल देव वर्मन की। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बड़ी बाजार चायबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक अंदरा ठाड़ी मधुबनी बिहार से कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है और हमें खत लिखा है सोभिकान झा सज्जन, हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लकी सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और एस के सज्जन ने। गांधी चौक बाड़ में राजस्थान के बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें भेजा है सद्भावना रेडियो श्रोता संघ पीएम सिटी बनारस यूपी से और अपनी फरमाइश हमें भेजी आजन कुमार सिंह, वंदना, विंती, विनायक, मोहिनी, मोहित और हर्षित पुलकित ने। छोटा निमड़ी चायबासा के बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। बड़ा बाम्बो गोपालपुर से संतोषी महतो और जय कुमार महतो ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें भेजा आशा रेडियो श्रोता संघ महाराष्ट्र मेहरनगर उमरखेड से और हमें खत लिखा अभिजीत गवांडकर, राही सरिता गवांडकर और प्रिंस एकांश गवांडकर ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर और कुमारी ध्वनि गवांडकर ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवांडकर, प्रणीता गवांडकर और टुकटुक गवांडकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा के चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल ने भी हमें खत लिखा। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए ये आ गया आपके रेडियो सेट पर का आज के कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी की फिल्म ये वादा रहा से।

श्रोताओं, फिल्म वादा रहा के इस गीत के साथ ही हमारे स्टूडियो की घड़ी ने अभी यह इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम रजनीगंधा से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दे, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, कृपया प्रतीक्षा करें।

समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के जापोरिज

0: इंडोनेशिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजे

0: जेजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
0: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
3: स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए,
2: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रूपये की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
5: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
4: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
6: मेरा नाम मुकेश भाई नाइका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
4: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16

0: अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
1: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहदा सलामती काउंसिल की असलाहत में भारत और अफ्रीका के लिए और ज्यादा नुमाइंदगी पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने फ्लाई दुबई के हवाई जहाज में कैप्टन स्मिथनाचार पर हमले की तहकीकात के लिए केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज के मकाम पर जाने की कोशिश करने वाले कई अफराद को हिरासत में लिया। बीजेपी ने कहा है कि जिमनी चुनाव में उसकी कामयाबी से जमहूरियत में एतमाद को तकवीत मिली है। पार्टी ने अपोजिशन पर एहतजाज के जरिए अवाम की जिंदगी में खलल डालने का इल्जाम लगाया है। यूक्रेन के ज़ाफ्रज़िया खित्ते में रूस के हमलों में 15 अफराद मारे गए हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को हिदायत दी है कि वो 16 अक्टूबर से रोजाना मतलूबा 99% CRR यानी कैश रिजर्व रेशो बरकरार रखें। और खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहदा सलामती काउंसिल की असलाहत पर जोर दिया है और कहा है कि आलमी सतह पर फैसला साजी के अमल में भारत और अफ्रीका पीछे नहीं रह सकते। अदीस अबाबा में अडवा विक्ट्री मेमोरियल म्यूजियम में एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों नौइयत की रुकनियत में मुनासिब अफ्रीकी नुमाइंदगी पर जोर दिया और अफ्रीकी यूनियन के लिए मुस्तकिल रुकनियत की खातिर 2023 में G20 की भारत की सदारत के दौरान की गई कोशिशों का तस्करा किया। 3 अफ्रीकी मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा तिजारती साझीदार रहा है और दो तरफा तिजारत $1 खरब के करीब पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी खित्ते में भारत की मदद से चलने वाले 220 से ज्यादा तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए हैं जिनकी मालियत $4.5 अरब है। उन्होंने भारतीय कारोबारी अफराद से जोर देकर कहा कि वो अफ्रीकी बर्रे आजम में सरमायाकारी करें। साथ ही उन्होंने खुराक की यकीनी फराहमी, ज़राअत और पायदार तरक्की के शोबों में ज्यादा इश्तराक पर भी जोर दिया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने फ्लाई दुबई की एक परवास के दौरान गुज़िश्ता महीने कैप्टन स्मिथनाचार पर हमले की तहकीकात के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। ये केस हाईजेकिंग की रोकथाम से मुतालिक कानून 2016 और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून 1967 के मुतालिक जाबतों के तहत दर्ज किया गया है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन मच्छर पर गुज़िश्ता महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अबीब की फ्लाई दुबई की परवास के दौरान उनके को पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था और वो संगीन तौर पर जख्मी हो गए थे। उस परवास में 27 बच्चों समेत 174 मुसाफिर सवार थे। दुनिया भर के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कैप्टन मच्छर की दलेरी की सताइश की जिन्होंने जख्मी होने के बावजूद मुसाफिरों को बचाया। दिल्ली पुलिस ने आज कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया जो जंतर मंतर पर एहतजाज के मकाम पर जाने की कोशिश कर रहे थे। कल दिल्ली पुलिस ने CJP के एहतजाज के लिए इजाजत नहीं दी थी। जिन अफराद को हिरासत में लिया गया था उन्हें रफ्तार रफ्तार रिहा किया जा रहा है। इंतखाबी कमीशन के खिलाफ CJP के एहतजाज के मद्देनजर कौमी राजधानी में सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था। दिल्ली पुलिस के अफसरों और अहलकारों के साथ साथ नीम फौजी अमले के अहलकारों को भी तैनात किया गया ताकि अमन कानून की किसी भी तरह की खिलाफवर्जी को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में अमन कानून की मौजूदा सूरत हाल और इम्तनाई अहकाम का हवाला देते हुए मुजाहरे की इजाजत नहीं दी थी। अमन कानून शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस अवाम के साथ सरगर्म राबता कायम किए हुए है और उनसे जोर देकर कहा है कि वो किसी तरह के गैर कानूनी एहतजाज में शामिल न हों। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के एहतजाज में लोगों का शामिल होना भी गैर कानूनी होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अमन कानून बरकरार रखने की खातिर मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और पड़ोसी रियासतों की पुलिस फोर्सेज समेत सभी एजेंसियों के साथ तालमेल कायम किए हुए है। जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि मजमूई एतबार से हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर हरमीत सिंह कालका ने गुरुद्वारा बंगला साहिब के अहाते में मुजाहिरीन के दाखिल होने के बाद वहां पुलिस को दाखिल होने की इजाजत देने के मामले पर आम आदमी पार्टी के कुछ रहनुमाओं की जानिब से सियासत करने की मजम्मत की है। जनाब कालका ने कहा कि ये मुजाहिरीन तख्तियों के साथ गुरुद्वारे के हॉल में जबरन दाखिल हो गए थे और उन्होंने वहां नारेबाजी की। जनाब कालका ने कहा कि गुरुद्वारे के अहाते में किसी भी तरह के एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सूरत हाल को देखते हुए गुरुद्वारा कमेटी ने इन मुजाहिरीन को वहां से बाहर निकालने के लिए पुलिस को तलब किया था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने मुत्तला किया है कि कल रात 9 बजे से जिन 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था, सिक्योरिटी वजूहात के सबब वो आज रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। DMRC ने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से सूरत हाल का दोबारा मजीद जायजा लिया जाएगा और उसी के मुताबिक जरूरी मालूमात फराहम की जाएंगी। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्ट को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह दावा किया गया था कि हुक्काम ने एहतजाज को रोकने के लिए दिल्ली में दानिस्ता तौर पर कूड़ा कचरा फैला दिया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के हकायक का पता लगाने वाले यूनिट ने यह वजाहत की है कि यह दावा फर्जी है। उसने कहा है कि यह वीडियो हरियाणा में पानीपत का अगस्त महीने का वीडियो है। उस वक्त सफाई कारकुन अपनी मुलाजमत की मांगों के सिलसिले में हड़ताल पर थे। BJP ने कहा है कि हालिया जिमनी चुनाव में उसकी कामयाबी से यह साबित हो गया है कि जमहूरियत ने उन अनासिर की कोशिशों को नाकाम बना दिया है जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी पुरअमन एहतजाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां इंतखाबात में अपनी शिकस्त की तलाफी के लिए सड़कों पर एहतजाज का सहारा ले रही हैं। उन्होंने पार्टी गुज़िश्ता 3-4 दिन से दिल्ली के लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रखी हैं। जनाब रविशंकर प्रसाद ने मजीद कहा कि मुल्क का निजाम जमहूरियत और उन अरकान की जवाबदेही के जरिए चलाया जाएगा जो पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए हैं। उन्होंने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर आईनी इदारों की छवि खराब करने और उन्हें
1: प्रोत्साहित करने की कोशिश को भारत के लोकतंत्र ने ध्वस्त किया है। एक और संदेश गया है कि देश संसद से चलेगा, सड़क से नहीं। कल रिजल्ट आए, आसाम में भाजपा जीती, नंदीग्राम में जीती और एक क्षेत्र तो 70% अल्पसंख्यक मतदाता प्रभावित है, वहां भी बीजेपी 70,000 प्लस से जीती। पांडिचेरी में NDA जीता।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने दयालपुर इलाके में शुमाल मशरकी दिल्ली में 2020 के फसादात से वाबस्ता एक केस में आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन को फसाद को शह देने का कसूरवार ठहराया है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने IPC के मुतालिका दफात के तहत ताहिर हुसैन को कसूरवार करार दिया है। अदालत ने हुसैन के खिलाफ सजा की नौइयत के बारे में दलायल की समाअत के लिए 16 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। इससे कबल जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने शुमाल मशरकी दिल्ली में 2020 के फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा की हलाकत से वाबस्ता केस में ताहिर हुसैन और 4 दीगर अफराद को कसूरवार ठहराया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नौजवानों के लिए पॉलिसियां वजा करते वक्त उनकी उमंगों, जरूरतों और बदलती हुई सूरत हाल को जेर गौर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में नरेंद्र मोहन लेक्चर से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि हुकूमत वक्त की बदलती हुई जरूरतों के पेश नजर नौजवानों के लिए पॉलिसी के नजरिए से नौजवानों के जरिए पॉलिसी और नौजवानों के साथ पॉलिसी की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इतफाक न करना इसका इजहार एक हक है, लेकिन इंतशार फैलाने को कबूल नहीं किया जाएगा। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि आईनी इदारों की जवाबदेही जमहूरियत का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जानबूझकर उनकी साख को जख्म पहुंचाना नाकाबिले कबूल है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जदीद जंगी हथियारों और आलमी सिक्योरिटी निजाम के सिलसिले में अहम तब्दीलियों के दरमियान उन कलीदी असरात के साथ साथ अपने पड़ोस और उससे आगे हालात वाकयात पर करीबी नजर रख रहा है। آج فضائیہ کے جودھپور اسٹیشن پر ترنگ شکتی 2026 مشق سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ قائم شدہ عالمی نظام تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جبکہ ابھرتے ہوئے عالمی نظام کے سلسلے میں غیر یقینی برقرار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پی ایم جن دھن یوجنا کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
2: 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے آغاز کیے جانے کے بعد سے پردھان منتری جن دھن یوجنا بھارت کی اقتصادی شمولیت کے معاملے میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر ابھری ہے۔ 59 کروڑ سے زیادہ جن دھن کھاتوں کے ساتھ یہ اسکیم دنیا بھر میں اقتصادی شمولیت کی سب سے بڑی پہل بن گئی ہے۔ اس اسکیم نے ہر کنبے کو بینکنگ تک رسائی فراہم کی اور یہ فائدے کی براہ راست منتقلی کے لیے ایک اہم بنیاد بنی۔ فلاحی اسکیموں کے فراہمی میں گڑبڑیوں کے روک تھام سے اس نے تقریباً 3.5 لاکھ کروڑ روپے کی بچت کرنے میں مدد کی۔ گزشتہ مہینے نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جن دھن یوجنا بھارت کے بینکنگ منظرنامے میں یکسر تبدیلی ثابت ہوئی ہے اور آج ملک کا ہر کنبہ بینکنگ نظام سے مربوط ہے۔
3: مارچ 2014 تک دیش کی 50% سے زیادہ آبادی کے پاس بینک اکاؤنٹ تک نہیں تھے، اور جو بینکنگ سسٹم سے باہر تھے وہ زیادہ تر غریب تھے، مہیلائیں تھیں، مائگریٹ لیبلر تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ اس لیے ہم جن دھن اسکیم لے کر آئے، اور بیتے 12 برسوں میں جن دھن یوجنا کی وجہ سے قریب 60 کروڑ نئے بینک اکاؤنٹ کھلے۔ آج دیش میں لگ بھگ ہر پریوار بینکنگ سسٹم سے جڑا ہوا ہے، یہی بھارت کی فنٹیک کرانتی کا آدھار بنا ہے۔
2: گجرات کے رہنے والے مکیش نائک نے کہا کہ انہیں مختلف حکومتی اسکیموں کے فائدے اپنے جن دھن کھاتے میں موصول ہو رہے ہیں۔
4: میرا نام مکیش بھائی نائکا ہے، میرا جن دھن اکاؤنٹ ہے اور میری ماں کا بھی اکاؤنٹ ہے۔ سرکار طرف سے جو بھی ملتی ہے سہائی وہ میرے کھاتے میں ترنت آ جاتی ہے، اور بعد میں میں اپنا روپے کریڈٹ کارڈ بھی یوز کرتا ہوں، اس سے بھی مجھے فائدہ ہے۔
2: دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی شمولیت کی پہل کے طور پر یہ اسکیم لاکھوں محروم شہریوں کے لیے بینکنگ تک رسائی کو نئے سرے سے تشکیل دے رہی ہے۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: بھارت نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مجوزہ عبوری تجارتی سمجھوتے کو بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں حتمی شکل دی جائے گی۔ آج نئی دلی میں تجارت اور صنعت کے ایوان پی ایچ ڈی سی سی آئی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ فروری میں جس فریم ورک کا اعلان کیا گیا تھا، امریکہ کے ٹیریف منظرنامے میں تبدیلیوں کے تناظر میں اس کا پھر سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے زیفروزیا خطے میں روس کے حملوں میں کم از کم 15 افراد مارے گئے جبکہ 16 زخمی ہوئے۔ علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ مخائلو سیمیکن نے الزام لگایا ہے کہ اس خطے میں روس نے رہائشی عمارتوں پر بمباری کی۔ روس کی فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی کو 4.5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ بھارتی ریزرو بینک نے کہا ہے کہ بینکوں کو 16 اکتوبر سے روزانہ 99% ضروری کیش ریزرو ریشو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی، جو اس وقت 90% ہے۔ بینکنگ نظام میں موجودہ نقد رقم کی دستیابی کی صورتحال کے جائزے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سے بینکنگ نظام میں نقد رقم کی دستیابی میں کمی میں مدد ملے گی، جو 8 اکتوبر کو تقریباً 3.88 لاکھ کروڑ روپے فاضل تھی۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی اصلاحات نیز بھارت اور افریقہ کے لیے اور زیادہ نمائندگی پر زور دیا ہے۔ قومی جانچ ایجنسی این آئی اے نے فلائی دبئی کے ہوائی جہاز میں کیپٹن اسمت مچھر پر حملے کی تحقیقات کے لیے کیس درج کیا ہے۔ دلی پولیس نے احتجاج کے مقام پر جانے کی کوشش کرنے والے کئی افراد کو حراست میں لیا۔ बीजेपी ने कहा है कि जिमनी चुनाव में उसकी कामयाबी से जमहूरियत में एतमाद को तकवीत मिली है। पार्टी ने अपोजिशन पर एहतजाज के जरिए आवाम की जिंदगी में खलल डालने का इल्जाम लगाया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति के इस सफर में आज सुनेंगे एक नए सांस्कृतिक गांव की कहानी, एक कलाकार की अनुपस्थिति से बातचीत, शहर की छतों पर उगती हरियाली और कुछ ऐसे नाम जिन्हें हम आज याद करेंगे। सबसे पहले हमारा संपादकीय। कल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस घोषित किया। पहली बार ये दिवस 2012 में मनाया गया।

और इसकी जड़ें 1995 की बीजिंग घोषणा में हैं, जहां पहली बार बालिका को नीति विमर्श के केंद्र में रखा गया था। यानी दुनिया को ये मानने में भी सदियां लगी कि लड़की सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं, अपने आप में

स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2019-21 के अनुसार 20 से 24 साल की लगभग 23% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले ही हो गया था। NFHS 4 में ये आंकड़ा करीब 27% था। इन आंकड़ों में ये गिरावट सुकून तो देती है, पर हर चौथी पांचवी बच्ची की शादी का बचपन में हो जाना कोई छोटी बात नहीं। जन्म के समय लिंगानुपात में भी थोड़ा सुधार दिखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी आई। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा, मगर कार्यबल में उनकी भागीदारी का सवाल अब भी खड़ा है। सवाल अब सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं, स्कूल के बाद आसमान तक पहुंचने का है। पढ़ने की आजादी के बाद चुनने की आजादी चाहिए, विषय चुनने की, पेशा चुनने की, साथी चुनने की और न चुनने की भी। हमारी संस्कृति में कन्या को देवी कहने की परंपरा है, पर देवी बना देना अक्सर इंसान ना बने रहने देने का तरीका भी बन जाता है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि उसे पूजा नहीं, पर्याप्त हवा, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पढ़ाई और बिना डर के एक रास्ता चाहिए। उसके हिस्से का आसमान उसे दान में नहीं मिलना चाहिए, वो उसका अपना है। हमें बस उसकी परवाज को संभालना है और उसके रास्ते की दुश्वारियां हटानी है। बेटियों के आसमान की बात के बाद अब बात जमीन की। एक ऐसी जमीन की जहां भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक गांव का रूप लेने जा रही है। नाम होगा कलाग्राम। इसकी परिकल्पना पर सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से बातचीत की गुलनिगार चौधरी ने। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सीसीआरटी क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये कला के किन क्षेत्रों में काम करता है?
1: देखिए, ऐसा है कि सीसीआरटी दैट इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नाम में ही बहुत कुछ है कि ये कल्चरल रिसोर्सेज तैयार करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देश भर के स्कूल टीचर्स हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनको हम आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये कोर्स नहीं है। तो देश भर के जो स्कूल टीचर्स है उनको जब हम इसमें ट्रेन करते हैं तो वो हमारे एक कल्चरल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। अब उनको सिर्फ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये चारों स्पर्धाओं में सिर्फ उनको ट्रेनिंग करना, उससे संबंधित जो जो बातें हैं, फिर सारी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, तो इनको लेकर भी क्राफ्ट है, फोक आर्ट्स है, इनको भी लेकर के डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो ये जो सारी बातें हैं जिनका संबंध आर्ट और कल्चर से है, और फिर ये आर्ट और कल्चर को हम एजुकेशन के भी साथ में जोड़ते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो सीसीआरटी ये आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर में कला के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से एक ऐसी पर्सनैलिटी टीचर की बनाते हैं कि वो सही में एक कल्चरल एम्बेसडर करके काम करता है। ये फिर हमारे देश भर में काम करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को ये सारी बातें पढ़ाए जो उन्होंने ट्रेन किया है, वो बातें सारी वो बच्चों तक पहुंचाते हैं। इसलिए देश भर में जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक हमारी बात पहुंचती है। तो ये बहुत अहम, एक बहुत अच्छा एक कार्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इन सारी बातों को लेकर हमारा एक सेंटर है, 1979 में शुरू हुआ था द्वारका में। यहाँ पर फिर हमारी एक बहुत अलग, बहुत सुंदर ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हम सब गतिविधियां करते हैं।
0: सीसीआरटी के द्वारा कला ग्राम नाम के इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: कला ग्राम तो निश्चित ही ये दो डिवीजन है और इसके पीछे एक सोच है। कला गुरुकुल जहां हम बात करते हैं, हमारा कहना है कि कला गुरुकुल में हम पूरा जो रिसर्च वर्क है, जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का, हम बड़े डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग आएंगे जो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, फेलोशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, टीचर्स को भी पढ़ाएंगे। एकेडमिक पार्ट जो होता है आर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हो सकता है कि आगे चल के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हम इसमें आर्ट और कल्चर को लेकर शुरू करेंगे। और दूसरा हमारा

0: कलाग्राम का, क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उन लोगों के वर्कशॉप्स होंगे, वो लोग यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो लोग बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो प्रोडक्ट बच्चे भी तैयार करेंगे, टीचर्स भी तैयार करेंगे, उसका हम मार्केटिंग करेंगे और हम ये देखेंगे कि इससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, ताकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं आर्ट के क्षेत्र में उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिजिनस जो भी कलाकृतियां बनती है उसको भी कहीं भी मार्केट मिलेगा। तो कलाग्राम में हम जैसे है कि आर्टिजन क्लस्टर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जीबिशन और कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए कुछ स्पेसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने और एक सोचा है कि कल्चरल टूरिज्म और इंटीग्रेटेड जोन्स इस प्रकार से हम उसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे, उसका एक हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी रहेगा जिसमें डायरेक्ट क्राफ्ट सेल्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल फेस्टिवल्स, ऐसे सारी बातें रहेंगी। तो ये कला गुरुकुल और कला ग्राम ये दो लेवल पर काम करेंगे और दो लेवल पर काम करने के बाद में जब हम सोचेंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक और जहां पर एकेडेमिक है वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल भी, तो दोनों बातों में ट्रेनिंग यहाँ पे सबको दी जाएगी। देश भर के जितने आर्टिस्ट हैं उन सबको फायदा होगा उसका, क्योंकि यहाँ से आर्ट वर्क जो बनने वाले हैं वो बेचे भी जाएंगे जिसमें एक रेवेन्यू जनरेशन भी होगा।
1: डॉक्टर साहब, तो इस प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप किस तरह रहेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू जनरेट किस तरह करेंगे आप?
0: हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक और जहां आप बोलते हो कि हम एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे या प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि अकेले के भरोसे तो होगा नहीं, तो पार्टनरशिप जो है वो भी करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हमने सोचा है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप जो है ये हमारे सोसाइटी के साथ किन किन के साथ हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो गवर्नमेंट की कल्चरल बॉडीज है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, फिर यूनिवर्सिटीज है और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ में भी हम मिलकर के काम करेंगे, हो सकता है उनके साथ हम एमओयू भी करेंगे। कुछ इंटरनेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो बहुत अच्छा काम करती है आर्ट और कल्चर को लेकर, हम उनके साथ भी काम करेंगे, उनके साथ में शायद कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स भी हम बना सकते हैं। कुछ एनजीओज जो है जो हेरिटेज और आर्ट्स पर बहुत काम करते हैं, सीएसआर पार्टनर्स या प्राइवेट फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं उनके भी साथ हम देखेंगे कि फंडिंग हमको सपोर्ट कैसा मिल सकता है, उनके साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन कैसा हो सकता है, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है।

पार्टनर्स या प्राइवेट फाउंडेशंस वगैरह जो होते हैं उनके भी साथ हम देखेंगे कि फंडिंग हमको सपोर्ट कैसा मिल सकता है, उनके साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन कैसा हो सकता है, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है।